0: very sad. And right now we are on the way to the ground zero.
1: Right, Raman, of course, you know, we'll keep coming back to you as and when more information comes in, but that definitely is some devastating information that we are tracking from Bihar early this morning, where we understand that in fact children have passed away after a boat capsized in the river Ganga. All right, now moving on to more stories coming in at the Sabo. Well, the political face-off over the special intensive revision of electoral voter rolls is now in fact escalating. After Rahul Gandhi's street fight, Home Minister Amit Shah has now hit back. The Home Minister has in fact accused Rahul Gandhi of using SIR to deflect attention from repeated electoral losses. Citing the BJP's latest wins in Gujarat, Amit Shah has now challenged the Congress leader to introspect and even warned him and even has asked him in fact to brace for another massive loss in 2029. Rahul Gandhi, the leader of opposition of Lok Sabha, has called the latest face-off as a fight to save the democracy. Well, he has said that the fight will go on, even as the BJP and Amit Shah call it an excuse for political failure. Well, as the battle over election commission turns into a war of contrasting political narratives, the confrontation is showing no signs of backing down.
2: भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और मोदी जी की लोकप्रियता को आप SIR का परिणाम कहकर झुटलाते हो, आपको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पांडिचेरी के चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई। फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। पूरी 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो। मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है। आपकी वहां कोई रीच नहीं है। कांग्रेस पार्टी को वहां की जनता ने नकारा है, हराया है। भारत की जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है। 29 में प्रचंड हार के लिए फिर से एक बार मन बना लीजिए। 2029 के आम चुनाव में NDA प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आने वाला है और कांग्रेस की फिर से एक बार लगातार चौथी बार हार होने वाली है। इस देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, BJP के साथ है, NDA के साथ है।
3: द पीपल हु हैव डन दिस, मिस्टर मोदी, हु इज द मेन आर्किटेक्ट, मिस्टर अमित शाह, हु इज द इंप्लीमेंटर, मिस्टर ज्ञानेश कुमार एंड अदर्स, they need to understand that the net is closing around them. It is not going to be so simple that you can destroy the Indian Constitution and get away with it. This is about the people of India. This is about the future of the people of India. And we, all of us together, because we love you and we respect you, are going to fight to the end to restore democratic process in this country. मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस प्रकार से हम सब ने मोबिलाइज किया, जिस एनर्जी से, जिस शक्ति से हमने मोबिलाइज किया, जिस यूनिटी के साथ हमने मोबिलाइज किया, उसी प्रकार से हम सब मिलकर लड़ते रहेंगे।
4: अगर सही माने में उनके पास कोई प्रूफ है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, अगर सही माने में कोई वोट चोरी का प्रमाण है उनके पास, तो कोर्ट को क्यों नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं दिया? अरे यहां इनकी तो इतनी बेवकूफी है कि एक पेटिशन भी ठीक से फाइल नहीं कर सकते। युवा हमारे साथी बोलते हैं डेलुलू इज द सोलुलू, ये माइंडसेट, ये जो मानसिकता इनकी, इसको डेल्यूजन में रहने के वाले जो लोग हैं उनको ये डेल्यूजन में ही सोल्यूशन दिखता है। डेलुलू इज द सोलुलू। और इसीलिए कई लोग मानते हैं कि राहुल गांधी स्वयं सबसे बड़े रेड फ्लैग है, ही इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग, जिसके कारण कांग्रेस बार बार हार रही है।

0: अगर वो सही माने में मानते हैं इलेक्शन कमीशन ने ईमानदार व्यवस्था नहीं रखी है तो क्यों नहीं रिजाइन करते हैं इनके छह के छह मुख्यमंत्री, तुरंत रिजाइन करना चाहिए।
1: हम आपको अगला प्रोग्राम क्या है इसके बारे में भी बताएंगे, और जो चार दिन में जो प्रोग्राम्स इंडिया गठबंधन के ओर से चलाया गया, राहुल जी और दूसरे नेता भी इसको बहुत ही गंभीरता से लेके जनता के समस्याओं को सुलझाने के लिए वो काम किए, और बहुत ही बढ़िया सक्सेस आपने देखा होगा। शायद ही इतनी बड़ी संख्या में लोग कभी नहीं जुड़े दिल्ली में, ये पहली बार है जो खुद अपने आप को सारे नौजवान लोग साथियों सभी लोग मिलके आए। आप देखे हैं, फिर उसके बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। जो मोदी का प्लान है वोट चोरी का, उसको पूरा एक्सपोज करने के लिए सारे लोग तैयार हो गए।
2: सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है, साफ और साफ बीजेपी अमित शाह और मोदी जी के इशारे पे। हम सब लोग एकजुट हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, और इसके लिए जो कुर्बानी देना होगा हम सब लोग जो है मिलकर के देंगे। ये देश गांधी जी का देश है, ये देश लोहिया जी का देश है, ये देश भगत सिंह का देश है, ये देश कर्पूरी ठाकुर जी का देश है, और इस देश को जो लोग संवैधानिक संस्थाएं हैं जो इस देश की, उसको हाईजैक करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन और ज्ञानू गुप्ता जी तो और आगे बढ़कर के चले गए 10 कदम। जिस हिसाब से एक कठपुतली की तरह ज्ञानेश गुप्ता जी ने जो काम किया है उसको जो है सजा ज़रूर मिलेगी। ये लोग बचने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग डरे हुए लोग हैं।
3: Our chat, my colleague Ishwarya also now joins us early this morning to bring us the details. Ishwarya, we just heard reactions from all across the political spectrum. You know, help us put into perspective the kind of face-off that is now emerging between the opposition and the ruling government.
4: Well, in a way, yesterday during the press conference of the India bloc, it was the leaders who were praising and applauding themselves as far as the huge, entire protest that was carried by the India bloc leaders towards the Supreme Court, and stated that never in the history of Delhi there were so many people who actually arrived together. And this is something that reflects that how people are completely anti against this government. Perhaps Home Minister Amit Shah lashed out yesterday at the Congress party and stated that SIR process just started in 2024, Rahul Gandhi entered politics long back. Perhaps if we look at the history and records, there are several elections in the past when before 2024 as well, Congress party have lost. Whether he will give credit to this loss for the SIR as well, it is in the recent Gujarat polls and the West Bengal polls, and the debacle of the Congress party in the recently held elections also categorically states how there was a massive victory to the Bharatiya Janata Party. Perhaps the Congress lost. Amit Shah clearly stating that it is Rahul Gandhi who should introspect as to what strategy he wanted to form, rather clearly demeaning the entire SIR exercise of the Election Commission. It is of course war of words and back-to-back losses. Amit Shah categorically stated that people will not come under this misconception of what the India bloc leaders are trying to spread in the country. Right. Perhaps in the upcoming elections as well, the Congress party and the India bloc leaders will face huge defeat.
3: Right, absolutely, Ishwarya. Thank you so much for joining us early this morning and bringing us these important updates. So like my colleague Ishwarya was mentioning, of course, a big face-off between the opposition as well as the ruling government, especially with regards to the SIR exercise. Moving on to some more updates for you. Well, we understand that the opposition's fresh case on the implementation

0: All right, our big focus this Wednesday morning, the political confrontation over the Election Commission is steadily escalating. A day after thousands marched to the Supreme Court demanding action against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and a rollback of the special intensive revision of voter rolls, Amit Shah has accused Rahul Gandhi of using this controversy to protect infiltrators and deflect attention from the Congress's electoral defeats. The Home Minister has actually pointed to the BJP's electoral victories, citing the BJP's latest wins in Gujarat, and challenged Rahul Gandhi to introspect, also predicting another NDA victory in 2029. This, though, as you know, and are well aware, is a political counterattack, not an answer to the allegations concerning the electoral process. Rahul Gandhi has called the latest face-off as a fight to save democracy, and the opposition seeking the removal of Gyanesh Kumar and the rollback, the scrapping actually of the special intensive revision of electoral rolls said it would keep up its resistance in this fight to save democracy and to restore democracy, irrespective of the role institutions play. This as the Home Minister's remarks come amid a heavily criticised crackdown by the Delhi Police, the RAF and other central forces, all of whom operate directly on the Home Ministry's orders. And this as the government has also withdrawn Jantar Mantar status as a designated protest site following days of demonstrations there. So as the political battle is intensifying, the substantive questions about electoral transparency and the right to dissent, they remain unanswered. Here are the political reactions you cannot ignore.
1: भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और मोदी जी की लोकप्रियता को आप SIR का परिणाम कहकर झुटलाते हो, आपको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पांडिचेरी के चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई। फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। पूरी 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो। मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है। आपकी वहां कोई रीच नहीं है। कांग्रेस पार्टी को वहां की जनता ने नकारा है, हराया है। भारत की जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है। 29 में प्रचंड हार के लिए फिर से एक बार मन बना लीजिए। 2029 के आम चुनाव में NDA प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आने वाला है और कांग्रेस की फिर से एक बार लगातार चौथी बार हार होने वाली है। इस देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, BJP के साथ है, NDA के साथ है।
2: द पीपल हु हैव डन दिस, मिस्टर मोदी, हु इज द main architect, Mr. Amit Shah, who is the implementer, Mr. Gyanesh Kumar, and others, they need to understand that the net is closing around them. It is not going to be so simple that you can destroy the Indian Constitution and get away with it. This is about the people of India. This is about the future of the people of India. And we, all of us together, because we love you and we respect you, are going to fight to the end to restore democratic process in this country. मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जिस प्रकार से हम सब ने मोबिलाइज किया, जिस एनर्जी से, जिस शक्ति से,

0: नहीं कर सकते। युवा हमारे साथी बोलते हैं डेलुलू इज द सोलुलू। ये माइंडसेट, ये जो मानसिकता है इनकी, इसको डेल्यूजन में रहने के लोग वाले जो लोग हैं उनको ये डेल्यूजन में ही सोल्यूशन दिखता है। डेलुलू इज द सोलुलू। और इसीलिए कई लोग मानते हैं कि राहुल गांधी स्वयं सबसे बड़े रेड फ्लैग है। ही इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग जिसके कारण कांग्रेस बार बार हार रही है।
1: अगर वो सही माने में मानते हैं इलेक्शन कमीशन ने ईमानदार व्यवस्था नहीं रखी है तो क्यों नहीं रिजाइन करते हैं इनके छह के छह मुख्यमंत्री? तुरंत रिजाइन करना चाहिए।
2: हम आपको अगला प्रोग्राम क्या है इसके बारे में भी बताएंगे, और जो चार दिन में जो प्रोग्राम्स इंडिया गठबंधन के ओर से चलाया गया, राहुल जी और दूसरे नेता भी इसको बहुत ही गंभीरता से लेके जनता के समस्याओं को सुलझाने के लिए वो काम किए, और बहुत ही बढ़िया सक्सेस आपने देखा होगा। शायद ही इतनी बड़ी संख्या में लोग कभी नहीं जुड़े दिल्ली में। ये पहली बार है जो खुद अपने आप को सारे नौजवान लोग, साथियों, सभी लोग मिलके आए। आप देखे हैं, फिर उसके बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। जो मोदी का प्लान है वोट चोरी का, उसको पूरा एक्सपोज करने के लिए सारे लोग तैयार हो गए।
3: सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से ज्ञानेश गुप्ता जी ने, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है, साफ और साफ बीजेपी अमित शाह और मोदी जी के इशारे पे। हम सब लोग एकजुट हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, और इसके लिए जो कुर्बानी देना होगा हम सब लोग जो है मिलकर के देंगे। ये देश गांधी जी का देश है, ये देश लोहिया जी का देश है, ये देश भगत सिंह का देश है, ये देश कर्पूरी ठाकुर जी का देश है, और इस देश को जो लोग संवैधानिक संस्था है जो इस देश की, उसको हाईजैक करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन और ज्ञानू गुप्ता जी तो और आगे बढ़कर के चले गए 10 कदम। जिस हिसाब से एक कठपुतली की तरह ज्ञानेश गुप्ता जी ने जो काम किया है उसको जो है सजा ज़रूर मिलेगी। ये लोग बचने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग डरे हुए लोग हैं।
4: Well, the opposition says it's planning to challenge the government's decision to cancel Jantar Mantar's status as a designated protest site as well. Aishwarya Jain has been tracking all the finer developments for us. He joins us with the clarity we need currently. Aishwarya, in conversations during the high tea, Rahul Gandhi has reportedly learned to have advised all the leaders present that their parties and outfits should be ready to mobilize within 24 hours against the government if needed.
5: Well, that's right. In fact, the momentum should continue is the word that is coming in after the press conference that was organized by leader of opposition Rahul Gandhi yesterday at his residence, where all the India bloc leaders gathered, and they themselves applauded as to how successful the rally was from Barakamba Junction towards the Supreme Court, how the entire political party, workers and the student unions mobilized on one call, and it was, according to them, thousands of people who came on the streets of the national capital to save the democracy. Perhaps Home Minister Amit Shah lashed out at the Congress party and stated that within a 1 kilometer of radius, if you will gather 8,000 people, that doesn't mean that the people living on mountains, on far villages, will agree to your perception of the SIR. Perhaps the Home Minister slammed the Congress party and leader of opposition Rahul Gandhi, hitting out at him, stating that when Mr. Rahul Gandhi came into the political spectrum, since then the Congress party has lost many, many elections. Before 2024, when the SIR was not in, had not started, it was Congress party who was facing

0: being transferred to Tihar. The focus shifts to the legal grounds for their continued detention, of course, and the next opportunity to contest it. We've got latest reactions lined up for you from the lawyer coming in, as well as Ajinkya Shinde. Listen in.
1: आपको पता होगा आज आशुतोष सौरभ दास और मैं और हमारे साथ सीजीपी के वॉलंटियर्स हम जंतर मंतर की ओर गए थे और हमने बस भारत का झंडा लहराया और भारत माता की जय बोला। तो इसके लिए इस मोदी शाह के तानाशाही सरकार ने सौरभ और आशुतोष को 5 दिन के लिए जेल में भेज दिया है। ये तानाशाही सरकार का अंत होके रहेगा। आज आशुतोष का बर्थडे था, उसके बर्थडे के दिन उन्होंने भारत माता की जय और तिरंगा का झंडा लहराने के लिए उनको जेल में भेज दिया है। मेरा ये पूरे देश की जनता से कहना है कि इस सरकार ने अपने सिस्टम का यूज करते हुए, अपने अधिकारों को गलत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट्स का तोड़ने की कोशिश शुरू की है। मेरा आपसे सबसे कहना है कि हम सबको एक साथ आकर इस तानाशाही सरकार का अंत करना होगा।
2: दिल्ली पुलिस की तरफ से ये दलील दी गई कि इन्होंने जो इनका बॉन्ड था उनका वायलेशन किया है। इनको उनका प्रेजम्पशन है कि ये फिर से ऐसा कर सकते हैं और जो इन्होंने किया है वो कानून का उल्लंघन है, 163 का उल्लंघन है। उनके हिसाब से पहली बार एक उनका कहना है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को ट्रेसपास किया गया है विदाउट प्राइवेट कंप्लेनेंट फाइलिंग दी कंप्लेंट। दिल्ली पुलिस ने खुद कॉग्निजेंस ले लिया है और उसके अगेंस्ट में एक्शन लेके और जिस केस के रेफरेंस में जो उसके लिए सेपरेट कंप्लेंट फाइल हुई है, जो बताया गया है कि कनॉट प्लेस में उसमें सेपरेट कंप्लेंट फाइल हुई है, उसको यहाँ पे यूज करते हुए, इसका मिसयूज करते हुए अपनी पावर अथॉरिटी का 5 दिन की जेसी में भेजा है।
0: Well, Cockroach Janata Party, Saurav Das and Ashutosh Ranka are being transferred to Tihar Jail. It happens to be Ashutosh Ranka's birthday today. What is the next legal step for the defence? And is there an immediate route to challenge the remand? We continue to track all this and more in a moment on The Breakfast Show on NDTV.

0: defeats. The Home Minister, in his response, has pointed to the BJP's electoral victories, citing the BJP's latest wins in Gujarat, and challenged Rahul Gandhi to introspect, predicting another NDA victory in 2029. This, though, as you are well aware, is a political counterattack, not an answer to the allegations concerning the electoral process. Rahul Gandhi has called the latest face-off a fight to save democracy. The opposition, seeking the removal of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and the scrapping of the SIR exercise, said it would keep up its resistance in the fight to restore democracy, irrespective of the role that institutions play. This as the Home Minister's remarks come amid a heavily criticized crackdown by the Delhi police, the RAF and other central forces, all of whom operate directly on the Home Ministry's orders. And this as the government has withdrawn Jantar Mantar's status as a designated protest site following days of protests there. So the political battle, as you can tell, is intensifying. The substantive questions about electoral transparency and the right to dissent, they remain unanswered. Here are the political reactions you cannot ignore this morning.
1: Bharatiya Janata Party ki lokpriyata aur Modi ji ki lokpriyata ko aap SIR ka parinam kehkar jhutlate ho. आपको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए. पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पांडिचेरी के चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई. फैब्रिकेटेड मीडिया इवेंट, झूठ की गूंज कर आप देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते. पूरी 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो. मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है. आपकी वहां कोई रीच नहीं है. कांग्रेस पार्टी को वहां की जनता ने नकारा है, हराया है. भारत की जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है. 29 में प्रचंड हार के लिए फिर से एक बार मन बना लीजिए. 2029 के आम चुनाव में NDA प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आने वाला है और कांग्रेस की फिर से एक बार लगातार चौथी बार हार होने वाली है. इस देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, बीजेपी के साथ है, NDA के साथ है.
2: द पीपल हु हैव डन दिस, मिस्टर मोदी, हु इज द मेन आर्किटेक्ट, Mr. Amit Shah, who is the implementer, Mr. Gyanesh Kumar, and others, they need to understand that the net is closing around them. It is not going to be so simple that you can destroy the Indian Constitution and get away with it. This is about the people of India. This is about the future of the people of India. And we, all of us together, because we love you and we respect you, are going to fight to the end to restore democratic process in this country. मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जिस प्रकार से हम सब ने मोबिलाइज किया, जिस एनर्जी से, जिस शक्ति से हमने मोबिलाइज किया, जिस यूनिटी के साथ हमने मोबिलाइज किया, उसी प्रकार से हम सब मिलकर लड़ते रहेंगे.
3: अगर सही माने में उनके पास कोई प्रूफ है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, अगर सही माने में कोई वोट चोरी का प्रमाण है उनके पास, तो कोर्ट को क्यों नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं दिया? अरे यहां इनकी तो इतनी बेवकूफी है कि एक पिटीशन भी ठीक से फाइल नहीं कर सकते. युवा हमारे साथी बोलते हैं डेलुलू इज द सोलुलू. ये माइंडसेट, ये जो मानसिकता है इनकी, इसको डेल्यूजन में रहने के वाले जो लोग हैं उनको ये डेल्यूजन में ही सोल्यूशन दिखता है. डेलुलू इज द सोलुलू. और इसीलिए कई लोग मानते हैं कि राहुल गांधी स्वयं सबसे बड़े रेड फ्लैग है. ही इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग जिसके कारण कांग्रेस बार बार हार रही है.
4: अगर वो सही माने में मानते हैं इलेक्शन कमीशन ने ईमानदार व्यवस्था नहीं रखी है, तो क्यों नहीं रिजाइन करते हैं इनके 6 के 6 मुख्यमंत्री? तुरंत रिजाइन करना चाहिए.
5: हम आपको अगला

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: झूठ की गूंज कर अब देश की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। पूरी 14 पार्टी का कैडर इकट्ठा कर 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 8,000 की भीड़ इकट्ठी कर आप देश की आवाज नहीं बन सकते हो। मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि देश की आवाज खेत खलियानों में, गांवों में, दूर सुदूर पहाड़ियों पर, जंगलों में और नदियों के किनारे भी है। आपकी वहां कोई रीच नहीं है। मैं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, SIR के बहाने घुसपैठिया बचाने का आपकी जो कार्य योजना है उसको देश की जनता भली भांति समझ चुकी है और अब भारत की जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है।
1: द पीपल हु हैव डन दिस, मिस्टर मोदी हु इज द मेन आर्किटेक्ट, मिस्टर अमित शाह हु इज द इम्प्लीमेंटर, मिस्टर ज्ञानेश कुमार एंड अदर्स, दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट the net is closing around them. It is not going to be so simple that you can destroy the Indian constitution and get away with it. This is about the people of India. This is about the future of the people of India. And we, all of us together, because we love you and we respect you, are going to fight to the end to restore democratic process in this country. मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस प्रकार से हम सब ने मोबिलाइज किया, जिस एनर्जी से, जिस शक्ति से हमने मोबिलाइज किया, जिस यूनिटी के साथ हमने मोबिलाइज किया, उसी प्रकार से हम सब मिलकर लड़ते रहेंगे।
2: अगर सही माने में उनके पास कोई प्रूफ है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, अगर सही माने में कोई वोट चोरी का प्रमाण है उनके पास, तो कोर्ट को क्यों नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं दिया? अरे यहां इनकी तो इतनी बेवकूफी है कि एक पेटिशन भी ठीक से फाइल नहीं कर सकते। युवा हमारे साथी बोलते हैं डेलुलू इज द सोलुलू, ये माइंडसेट, ये जो मानसिकता इनकी, इसको डेल्यूजन में रहने के वाले जो लोग हैं उनको ये डेल्यूजन में ही सोल्यूशन दिखता है। डेलुलू इज द सोलुलू। और इसीलिए कई लोग मानते हैं कि राहुल गांधी स्वयं सबसे बड़े रेड फ्लैग है, ही इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग, जिसके कारण कांग्रेस बार बार हार रही है।
3: अगर वो सही माने में मानते हैं इलेक्शन कमीशन ने ईमानदार व्यवस्था नहीं रखी है, तो क्यों नहीं रिजाइन करते हैं इनके 6 के 6 मुख्यमंत्री? तुरंत रिजाइन करना चाहिए।
4: हम आपको अगला प्रोग्राम क्या है इसके बारे में भी बताएंगे, और जो 4 दिन में जो प्रोग्राम्स इंडिया गठबंधन के ओर से चलाया गया, राहुल जी और दूसरे नेता भी इसको बहुत ही गंभीरता से लेके जनता के समस्याओं को सुलझाने के लिए वो काम किए, और बहुत ही बढ़िया सक्सेस आपने देखा होगा। शायद ही इतनी बड़ी संख्या में लोग कभी नहीं जुड़े दिल्ली में, ये पहली बार है जो खुद अपने आप को सारे नौजवान लोग, साथियों, सभी लोग मिलके आए। आप देखे हैं, फिर उसके बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। जो मोदी का प्लान है वोट चोरी का, उसको पूरा एक्सपोज करने के लिए सारे लोग तैयार हो गए।
5: सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है, साफ और साफ बीजेपी, अमित शाह और मोदी जी के इशारे पे। हम सब लोग एकजुट हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, और इसके लिए जो कुर्बानी देना होगा हम सब लोग जो है मिलकर के देंगे। ये देश गांधी जी का देश है, ये देश लोहिया जी का देश है, ये देश भगत सिंह का देश है, ये देश

0: पूरी ठाकुर जी का देश है और इस देश को जो लोग संवैधानिक संस्था है जो इस देश की उसको हाईजैक करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन और ज्ञानू गुप्ता जी तो और आगे बढ़कर के चले गए 10 कदम। जिस हिसाब से एक कठपुतली की तरह ज्ञानेश गुप्ता जी ने जो काम किया है उसको जो है सजा ज़रूर मिलेगी। ये लोग बचने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग डरे हुए लोग हैं।
1: Meanwhile, a showdown is brewing over Jantar Mantar in the national capital after the Delhi police denotified the iconic protest site. The Congress, along with other opposition leaders, have hit out, with Rahul Gandhi vowing to challenge this decision, saying people must have the right to express their democratic concerns. The police, on the other hand, say the move follows the Supreme Court direction to identify alternative protest venues, but with opposition leaders demanding Jantar Mantar be reopened, the battle over where people can protest is far from over. You see, Ramlila Ground, Burari Ground, CBD Ground, they have been named as alternative venues, but police are yet to issue SOPs for protests there. And meanwhile, we're also picking up on reports that there aren't even any dates left on this calendar year as far as Ramlila Maidan is concerned to book that site for the protest. And activists are saying Jantar Mantar's proximity to parliament is crucial to making their voices heard. Here's what Rahul Gandhi has to say.
2: Our commitment to you that the people who have done this, Mr. Modi, Mr. Shah, Mr. Ganesh Kumar, the lady who's hiding right now in Dehradun, and others are going to be brought to justice.
3: देखिए, डिसाइडेड तो अभी तुरंत नहीं है कि क्या डेट होगा, क्या होगा, क्योंकि उनका कहना है कि जो भी फाइनल होगा सभी पार्टी लीडर्स से बात करने के बाद ही होगा। लेकिन एक मुद्दा नया आया है जिसको लेकर आने वाले दिनों में प्रोटेस्ट होगा, जो है जंतर मंतर को बंद कर दिया जाना। क्योंकि देखिए, इतने वर्षों से जंतर मंतर एक ऐसी जगह है देश की राजधानी में, दिल्ली में, जहाँ पर आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग या ट्रेड यूनियन के लोग, स्टूडेंट्स, सभी आते हैं और अपनी बात रखते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। अब केंद्र सरकार जिस तरह से उसे बंद करके कोई और वेन्यू बता रही है, रामलीला मैदान और कहाँ कहाँ, कि वहाँ जाके प्रोटेस्ट करो। वहाँ पे रामलीला मैदान तो ऐसे भी सालों भर बुक्ड रहता है, एक आध दिन कहीं महीने में खाली है, फिर उसमें 1 लाख से ऊपर का पर डे का चार्ज रखा गया है।
4: गवर्नमेंट हैज डी नोटिफाइड जंतर मंतर, वी स्ट्रांगली कंडम दिस। जंतर मंतर शुड रिमेन as place for our protest by the people, because earlier Rajpath we used to have protest, it was banned. Earlier we used to have protest in Parliament Street, it was banned. Now Jantar Mantar, then where do they want people to go? The national capital people. So we strongly condemn the denotification of Jantar Mantar. We will fight to regain the Jantar Mantar for the place for protest by the people.
1: All right, let's turn our attention now to the latest updates we are tracking. The Mamata faction of the Trinamool Congress has alleged that a woman tried to attack the former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee outside her residence in Kolkata's Kalighat as she stepped out to inaugurate a Durga Puja pandal. But that's now triggered a political response from the BJP, and Dilip Ghosh has reacted, questioned Mamata Banerjee's account and also told her to rest. The BJP seems to be dismissing Mamata Banerjee's claims. It's being seen as political mockery. Just listen in to Dilip Ghosh's reaction on behalf of the BJP.
5: हमेशा वही बोलती हैं। उन्होंने क्या किया जनता को मालूम नहीं है, उनके ऊपर कहां कैसे अटैक होता किसी को मालूम नहीं, घर में वो गिर जाती, कोई बोलता धक्का मार दिया, खुद बोलती हैं चोट लगी है, किसी को मालूम नहीं है। तो ये कैसे खुद हार गई वो भी उनको मालूम नहीं है। इस स्थिति में उनको थोड़ा आराम करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए, देखना चाहिए जनता क्या चाह रही
1: है। My colleague Hrithik Mondal has been tracking all the finer details. He joins us live at the moment. Hrithik, has the police complained or filed any sort of complaint regarding the matter, any FIR yet? Take us through the TMC and the BJP's account of what really played out as well.
6: Well, this is another slugfest that is beginning between BJP and Trinamool Congress. You have just heard Bengal Minister Dilip Ghosh. In a way, he tried to mock former Bengal Chief Minister Mamata Banerjee over the alleged attack. So far, the police investigations are concerned. What we are given to understand, following Dola Shen, TNC MP lodged in a police complaint with Kalighat police station, action was taken. The accused person, who has been identified as Anushua Shaha, a civic volunteer, she has been detained and the questionings are underway. Though we are yet to know that whether police have lodged an FIR or going to arrest that lady, but in the video which have been circulated by Trinamool Congress, as they allege that this particular woman carrying a sharp weapon, she tried to attack Mamata Banerjee when she stepped out at her Kalighat residence last evening in order to inaugurate a Durga Puja. And that amid this ruckus, somehow police personnel deployed over there and the other TNC men, they grabbed that woman and took away her from Mamata Banerjee. But a serious allegation has been labeled by Trinamool Congress. Police says that they are following the further in the course of investigations. And amid a situation, what we can see, that BJP has hit out at Mamata Banerjee and Dilip Ghosh suggested former Chief Minister to take rest. Back to you.
1: Ritik, as always, thanks so much for joining us with the latest details. All right, in other news, the Jammu and Kashmir Waqf Board's proposal to introduce common themes for Friday's sermons across its affiliated mosques and religious institutions has triggered a political controversy, with Chief Minister Omar Abdullah and the PDP President Mehbooba Mufti and several religious and political figures opposing the move. You see, the board has urged imams to address social issues through their sermons, triggering strong opposition from the National Conference along with the PDP. Omar Abdullah has termed the move an unacceptable attempt to interfere in religious affairs, while PDP's Mehbooba Mufti has categorically questioned the board's role, demanding that it be handed over to the Jammu and Kashmir government.
7: हमारे सरमन्स हमारा दीन जो है जो जुमा का खुतबा हमारा होता है जिसमें हमारे इमामो खतीब जो बहुत ही नॉलेजेबल हैं वो उस दिन सरमन देते हैं उसमें एक तो हमारा जो खुतबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है उसके बाद हमारे इमामो खतीब बात करते हैं अपने जो उनका ऑडियंस होते हैं जो नमाज पढ़ने वाले आते हैं उनसे वो बातचीत 2-5 मिनट करते हैं उन्होंने एक जुबान में कहा कि समाज में वाकई प्रॉब्लम्स है हमें इस पे बात करनी चाहिए और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के साथ वो है ये वो इंडिपेंडेंट स्कॉलर्स जो हमारे प्रीचर्स हैं जो हमारे सरमन्स देते हैं ये उनका डिसीजन है कि हम समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे
8: जो वो मौजूआत उन्होंने तय किए हैं जो वो तय करें अगर वो किसी हद तक वाकई में मुखलिस हैं तो उसके लिए फिर मैं ये कहूँगा कि शायद मुत्तफिका उलमा कॉन्फ्रेंस जो है हमारी जेएनके में यानी फिर उसमें हर खित्ते के उलमा को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए नहीं मंजूर नहीं हमें जहाँ तो ये है जो खदशात हैं वो दूर किए जाएं अगर वो खदशात उन्होंने उस वक्त ऑनलाइन भी हमने जो सवाल किए थे उन्होंने दूर नहीं किए बल्कि हमें चुप करा दिया अगर उसी वजह से ज़्यादा हमें खदशात कुछ लग रहे हैं इसलिए हम चाहते हैं वापस उन्हें
9: पहले बोला UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी तरह आप यूनिफॉर्मिटी इसमें भी ये देखिए ये मस्जिदें जो हैं ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है एक ये मस्जिदें जो बनी हैं ये हमारे अकीदे के पैसे से बनी हैं और यहाँ मौलवी जो हैं जो इमाम है वो जानते हैं उनको क्या बात करनी है तो अब ये एक ऐसा सिलसिला चालू करना चाहते हैं जिससे बीजेपी के दफ्तर से RSS के दफ्तर से इंफॉर्मेशन आएगी कि आज के खुतबे में हमारे मौलवी साहब क्या बोलेंगे ये तो किसी तरह से हमें एक्सेप्टेबल नहीं है और ये जो वक्फ बोर्ड है पहले भी हमने जो वक्फ बिल आया था उसके खिलाफ हमने रेजोल्यूशन लाया असेंबली में हम उसकी मुखालफत करते हैं और किसी भी पार्टी को किसी भी सरकार को ये हक नहीं है कि वो किसी भी दीन में चाहे उसमें इस तरह की मुदाखलत करें
10: ये कैसा एक ऑर्डर है कि जहां आज आप इमामों को हमारे खतीबों को भी ये बोलेंगे कि आपको बोलना क्या है तो मुझे लगता है बड़ा अफसोस की बात है अब बीजेपी डिसाइड करेगी कि हमारे मेंबर पे क्या कौन से खुतबा होगा मुझे लगता है ये बिल्कुल इस ऑर्डर को वापस ले जाना चाहिए और दूसरी चीज़ शायद ये जो इनकी मैडम है इनको एक आदत हो गई है कि जो ये आजकल के मौलवी हैं वो उनकी तारीफ करते हैं। मेंबर उसके लिए नहीं है, मेंबर है रसूल इसलिए है कि आप लोगों को जो सरकमस्टांसेस है, जो सिचुएशन है, उसके ऊपर बात करें और इस्लाम की तालीमों पे बात करें। मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, ना मैं मुझे इसके ऊपर कोई ये है, लेकिन आम आदमी जुमा की नमाज में जाता है और खुतबा सुनता है। मैं चाहता हूँ कि मैं जब वहाँ जाऊँ मैं कुछ सीखूँ, इस्लाम के बारे में सीखूँ।
1: Well, on that note, we're slipping into a very quick break. We've got all the latest updates lined up for you in a moment, including the fact that the India Bloc's protest against Gyanesh Kumar in Chennai tomorrow is taking on added political significance with TVK Vijay's party.
11: Going beyond what's said. Getting to the reality behind the rhetoric. Anyone
12: message of unit? আমার স্বামী যাকে যেভাবে হত্যা করলে তাদের ফাঁসি দেওয়া তো উচিত.
13: Also the police action.
11: Taking questions where they matter most.
13: The question is language কি বাত করে?
11: Urgent, exact, empathetic.
13: There is no fire escape. There is no alternative safety route.
11: Because when it really matters, someone has to answer. The buck stops here. Weekdays, 8 p.m. only on NDTV. When it really matters.
14: Hindustan mile, Hindustan se. Desh ka tire, JK tire.

0: कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगाया हुआ है.
1: गोइंग बियॉन्ड व्हाट सेड, गेटिंग टू द रियलिटी बिहाइंड द रेटोरिक.
0: एनीवन मैसेज ऑफ यूनिट
2: আমার স্বামী রাখে যে ভাব হত্যা করলে তাদের ফাঁসি দেওয়া তো উচিত.
0: Also the police action,
1: taking questions where they matter most.
0: The question is language ki hum baat kar
1: rahe, urgent, exact, empathetic.
0: There is no fire escape, there is no alternative safety route,
1: because when it really matters, someone has to answer. The buck stops here. Weekdays 8 p.m. only on NDTV. When it really matters.

0: कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगाया हुआ है.
1: गोइंग बियॉन्ड व्हाट सेड, गेटिंग टू द रियलिटी बिहाइंड द रेटोरिक.
0: एनीवन मैसेज ऑफ यूनिट
2: हमार स्वामी जाके जे बाबू हत्या कर ले तब फांसी दवा तो उची.
0: Also, the police action.
1: Taking questions where they matter most.
0: The question is, language kyun baat kare?
1: Urgent, exact, empathetic.
0: There is no fire escape. There is no alternative safety route.
1: Because when it really matters, someone has to answer. The buck stops here. Weekdays, 8 p.m. only on NDTV. When it really matters.

0: The BJP, they're taking on Rahul Gandhi. Now, a showdown is brewing over Jantar Mantar in the national capital after the Delhi police has denotified the iconic protest site. The Congress and other opposition leaders have hit out, with Rahul Gandhi vowing to challenge the decision, saying people must have the right to express their democratic concerns. The police say the move follows a Supreme Court direction to identify alternative protest venues. But with opposition leaders demanding Jantar Mantar to be reopened, the battle over where people can protest is clearly far from over. Ram Leela Ground, Burari Ground and CBD Ground have been named as alternative venues, but the police is yet to put those SOPs in place for protests. Activists say Jantar Mantar's proximity to Parliament is crucial to ensure that their voices can be heard.
1: देखिए, डिसाइडेड तो अभी तुरंत नहीं है कि क्या डेट होगा, क्या होगा, क्योंकि उनका कहना है कि जो भी फाइनल होगा सभी पार्टी लीडर्स से बात करने के बाद ही होगा. लेकिन एक मुद्दा नया आया है जिसको लेकर आने वाले दिनों में प्रोटेस्ट होगा, जो है जंतर मंतर को बंद कर दिया जाना. क्योंकि देखिए, इतने वर्षों से जंतर मंतर एक ऐसी जगह है देश की राजधानी में, दिल्ली में, जहाँ पर आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग या ट्रेड यूनियन के लोग, स्टूडेंट्स, सभी आते हैं और अपनी बात रखते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं. अब केंद्र सरकार जिस तरह से उसे बंद करके कोई और वेन्यू बता रही है, रामलीला मैदान और कहाँ कहाँ, कि वहाँ जाके प्रोटेस्ट करो. वहाँ पे रामलीला मैदान तो ऐसे भी सालों भर बुक्ड रहता है, एक आध दिन कहीं महीने में खाली है. फिर उसमें 1 लाख से ऊपर का पर डे का चार्ज रखा गया है.
2: गवर्नमेंट हैज डी नोटिफाइड जंतर मंतर. वी स्ट्रांगली कंडम दिस. जंतर मंतर शुड रिमेन as place for our protest by the people, because earlier Rajpath we used to have protest, it was banned. Earlier we used to have protest in Parliament Street, it was banned. Now Jantar Mantar, then where do they want people to go? The national capital people. So we strongly condemn the denotification of Jantar Mantar. We will fight to regain the Jantar Mantar for the place for protest by the people.
3: चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है. ऐसे में विपक्ष को अगर शिकायत है तो एक बार कम से कम प्रयास तो करें. जैसे सीजीआई से जा मिलने का इन लोगों ने प्रयास किया, सीजीआई ने स्पष्ट कहा कि मामला विचाराधीन है, मुलाकात नहीं हो सकती. महामहिम से इन लोगों ने मुलाकात की. एक बार चुनाव आयोग ने जाकर मुलाकात प्रतिनिधि मंडल के साथ कर कम से कम अपने प्रश्नों का जवाब तो लेने का प्रयास करें. सिर्फ सड़क पे विपक्ष के द्वारा इस तरीके का हंगामा किए जाना, ये कहीं से भी उचित नहीं है. और आपको समाधान नहीं चाहिए तो ये विपक्ष की सोच भी गलत है. दिल्ली को बंधक इन लोगों ने इतने दिन से बना के रखा हुआ है.
0: And a political firestorm has erupted over Home Minister Amit Shah's 2029 poll win remark ahead of the Lok Sabha elections. Union Home Minister Amit Shah has predicted a massive victory for the NDA. Shah has also targeted Rahul Gandhi, saying the Congress is headed for its fourth consecutive defeat. Pawan Khera from the Congress has questioned Home Minister Shah's confidence about the 2029 verdict. Khera also raised questions about Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar's tenure. He asked how Shah could be so confident of a victory in 2029 and challenged the Home Minister to step out onto the streets and witness public anger without police presence.
4: Rahul Gandhi ji ko batana chahta hun ki Rahul Gandhi ji, SIR ke bahane ghuspethiya bachane ka aapki jo karya yojana hai usko desh ki janta bhali bhanti samajh chuki hai. और अब भारत की जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है. श्री राहुल जी और उनके साथियों को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 29 में प्रचंड हार के लिए फिर से एक बार मन बना लीजिए. 2029 के आम चुनाव में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आने वाला है और कांग्रेस की फिर से एक बार लगातार चौथी बार हार होने वाली है.
5: अब यूं तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आते आते, बहुमत लाते लाते 50-60 साल लग गए. फिर क्या कहें हम? ये अजीब सी टिप्पणी है साहब कि कांग्रेस कई राज्यों में इतने सालों से, भाई आप तो देश में कितने सालों तक नहीं थे? आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? फिर कहते हैं 29 भी हम जीतेंगे, क्यों इतना भरोसा है ज्ञानेश पर? और ज्ञानेश रहेगा 29 तक? ये चुनाव आयोग जिस तरह से चल रहा है, हम चलने देंगे 29 तक? कि इतना भरोसा, हमारी बात साबित करते हैं ये बात कहकर, तो वो कि 29 में भी हम जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हो साहब? सड़क पे तो निकलकर देखो, गुस्सा तो देखो लोगों का, आकर हटाओ पुलिस और आकर देखो गुस्सा।
6: अमित शाह जी अपने फॉर्म में नहीं थे। म्यूनिसिपल चुनाव, स्थानीय चुनाव, उसको जीत को वो ऐसा प्रस्तुत कर रहे थे जैसे उन्होंने भारत जीत लिया। अरे अमित शाह जी, आपसे कहना चाहता हूँ, चुनावी मशीनरी का इस्तेमाल करके, प्रशासन का इस्तेमाल करके बहुत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आपने जीते हैं, पर जिसको आप 1,000, 2,000, 10,000, 15,000 की भीड़ कर रहे हैं, उसे मीडिया से पूछिए, खुद आंखें देखिए, जो उनमें उत्साह था, जज्बा था, उसको समझने की कोशिश कीजिए। तानाशाह हमेशा यही गलती करता है, जज्बा नहीं समझता। आज हिंदुस्तान का जो यहाँ दिल्ली आया था या नहीं आया था, उसका यही जज्बा है कि हम आपको ज्ञानेश कुमार की बेईमानी से, जो आपने किया है, लोकतंत्र खत्म नहीं होने देंगे, संविधान छीनने नहीं देंगे।
0: And once again, breaking news coming in. The Harvard community has come out with a statement. They are saying that silence cannot be an excuse for indifference. Constitutional institutions must be respected at all times. Sweeping accusations cannot substitute for evidence. Due process and institutional accountability matter. Public trust in democratic institutions must be protected. Our commitment must remain to the Constitution. Justice, not selective outrage, must prevail. Democratic institutions, not the politics of accusation. So that's what the Harvard community is saying at this point. I'm just going to quickly recap what they've said before we go to our correspondent Aishwarya. They have said silence cannot be an excuse for indifference. Constitutional institutions must be respected at all times. Sweeping accusations cannot substitute for evidence. So, of course, they're talking about the protests that have been taking place in the national capital against the Chief Election Commissioner, Gyanesh Kumar. Then they go on to say due process and institutional accountability matter, and public trust in democratic institutions must be protected. Our commitment must remain to the Constitution. Justice, not selective outrage, must prevail. Democratic institutions, not the politics of accusation, should prevail. That's the reaction coming in from the Harvard community at this point, at a time when we have seen a series of protests in the national capital against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. We have seen protests at Jantar Mantar. We have seen protests even outside the Election Commissioner's office. And we have even seen a march to the Supreme Court as well. So at a time when a series of protests have been taking place, you have the Harvard community coming out. I think the biggest takeaway from their statement is justice, not selective outrage, must prevail. We're going to try and get Aishwarya live on the story at this point to give us more details. This is the Harvard community that has come out with the statement stating that public trust in democratic institutions must be protected. Aishwarya now joins me live. Aishwarya, just decode for our viewer this Harvard community statement that has come in, because on one hand they say public trust in democratic institutions must be protected and justice, not selective outrage, must prevail.
7: Well, that's absolutely right. In fact, there is a dissent that are in the constitutional organizations, multi-parties which are involved, there are multi-authorities, and therefore the reason perhaps now a wider, cross-section of the Harvard community, which includes lawyers, it includes policymakers, civil servants, scientists, academicians, have written a letter in which it has stated that dissent is a democratic right. A major, political flashpoint has emerged over the credibility, remember, of India's constitutional institutions. And now a group concerned citizens have raised questions over what it describes as a concerted campaign against institutions such as Election Commission of India, the Supreme Court, the Office of the Chief Justice of India, and the Parliament. Of course, this statement comes amid an intensifying political confrontation over allegations and

0: ऑफ कॉन्डक्ट लगाया हुआ है.
1: गोइंग बियॉन्ड व्हाट सेड, गेटिंग टू द रियलिटी बिहाइंड द रेटोरिक.
0: एनीवन मैसेज ऑफ यूनिट.
2: हमार स्वामी जाके जे बाबू हत्या कर ले ताबे फांसी दवा तो छी.
0: ऑल्सो द पुलिस एक्शन,
1: टेकिंग क्वेश्चंस वेयर दे मैटर मोस्ट.
0: द क्वेश्चन इज लैंग्वेज के बात करें.
1: अर्जेंट, एग्जैक्ट, empathetic.
0: There is no fire escape. There is no alternative safety route.
1: Because when it really matters, someone has to answer. The buck stops here. Weekdays, 8 p.m. only on NDTV. When it really matters.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात.
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है.
3: अरे मेरे राजा.

0: You're watching Breaking Ground, Ambedkar. So with a quick check on the headlines that this hour, CJP leaders Ashutosh Shankar and Saurav Das jailed for 5 days for Jantar Mantar trespassing. Rahul Gandhi opposition slam arrest, say unfurling the Tiranga isn't a crime, but the Delhi police have called them repeat offenders. Politics over Home Minister Amit Shah's will win in 2029 comment. Congress trains guns, asks how do you know of victory in 2029, also questions if Gyanesh Kumar will continue till the 2029 polls. The TVK to be part of India Bloc protests against poll body in Tamil Nadu tomorrow. India Bloc demands CEC Gyanesh Kumar's resignation. Sex for marks charge against Congress MP Akhoy Jam. BJP women delegation to meet women's panel chief seeks strict action against Akhoy Jam, asks why is Congress not sacking him as an MP of the party. The Punjab opposition tears into Bhagwant Mann after anti-drug activist is killed in Mansa. Opposition demands Mann's resignation while bulldozers raise home of the accused. 13 killed after boat carrying about 15 to 20 people capsizes in Ganga in the state of Bihar. 7 hospitalized. SDRF teams, divers continue search and rescue operations. Our big international focus, Saudi national Al-Fuzan arrested for planting recording device at OpenAI office. He allegedly wrapped a USB device in toilet paper and inserted it into a television located in an executive conference room. But a top focus, CJP leaders Ashutosh Ranka and Saurav Das have been sent to Tihar jail for 5 days after being arrested for protesting at the Jantar Mantar. They were produced before a magistrate at the SEM court located at Mandir Marg police station. Both leaders were arrested on the charges of trespassing and violation of previous arrest bond. Remember, 14 Kokro Janta Party members were detained yesterday for trespassing and scaling the walls of Jantar Mantar. The CJP founder Abhijit Dipke has spoken out on the arrests and called this a cowardly attack and an attempt to crush dissent. As per Delhi police, Saurav Das and Ashutosh Ranka are repeat offenders and have breached the bail bond.
1: देश में इमरजेंसी लगानी है, इमरजेंसी करनी है तो ऑफिशियली करो ना। ये क्या कायरों की तरह अनऑफिशियली आप इमरजेंसी कर रहे हो, जहां पर आप लोगों को जंतर मंतर पर तिरंगा लहराने के लिए 5 दिन हिरासत में ले रहे हो। ऐसा तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था। तिरंगा लहराना इस देश में कब से बड़ा इतना पाप हो गया कि उसके लिए आप लोगों को 5 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हो। तो नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूँ, इतने बड़े कायर मत बनो, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। अगर इमरजेंसी लगानी है तो ऑफिशियली लगाओ, दम है तो।
2: आपको पता होगा आज आशुतोष, सौरभ दास और मैं और हमारे साथ सीजीपी के वॉलंटियर्स हम जंतर मंतर की ओर गए थे और हमने बस भारत का झंडा लहराया और भारत माता की जय बोला। तो इसके लिए इस मोदी शाह की तानाशाही सरकार ने सौरभ और आशुतोष को 5 दिन के लिए जेल में भेज दिया है। ये तानाशाही सरकार का अंत होके रहेगा। आज आशुतोष का बर्थडे था, उसके बर्थडे के दिन उन्होंने भारत माता की जय और तिरंगा का झंडा लहराने के लिए उनको जेल में भेज दिया है। मेरा ये पूरे देश की जनता से कहना है कि इस सरकार ने अपने सिस्टम का यूज करते हुए, अपने अधिकारों को गलत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट्स का तोड़ने की कोशिश शुरू की है। मेरा आपसे सबसे कहना है कि हम सबको एक साथ आकर इस तानाशाही सरकार का अंत करना होगा।
3: दिल्ली पुलिस की तरफ से ये दलील दी गई कि इन्होंने जो इनका बॉन्ड था उनका वायलेशन किया है। उनका प्रेजम्पशन है कि ये फिर से ऐसा कर सकते हैं और जो इन्होंने किया है वो कानून का उल्लंघन है, 163 का उल्लंघन है। उनके हिसाब से पहली बार एक उनका कहना है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को ट्रेसपास किया गया है विदाउट प्राइवेट कंप्लेनेंट फाइलिंग दी कंप्लेंट। दिल्ली पुलिस ने खुद कॉग्निजेंस ले लिया है और उसके अगेंस्ट में एक्शन लेके और जिस केस के रेफरेंस में जो उसके लिए सेपरेट कंप्लेंट फाइल हुई है, जो बताया गया है कि कनॉट प्लेस में उसमें सेपरेट कंप्लेंट फाइल हुई है, उसको यहाँ पे यूज़ करते हुए, इसका मिसयूज़ करते हुए अपनी पावर अथॉरिटी का 5 दिन की जेसी में भेजा है।
0: My colleague Soumya now joins me live. Soumya, you have Rahul Gandhi and other opposition leaders backing the CJP leaders who've been jailed for the protests. But let's just quickly also talk about what options the CJP leaders have while they are in five-day judicial custody. Legally, can they challenge being in jail for 5 days?
4: Well, Vedika, you've correctly pointed out that several opposition leaders have come out in support of the CJP leadership who has been sent to 5 days of judicial custody. Now, there are several grounds on which this judicial custody decision was announced by the SCM court at Mandir Marg police station earlier today. It clearly states that it was a clear-cut breach of the surety bond that Ashutosh Ranka and Saurabh Das had signed last week on a Sunday, which barred them from being part of any such protest for next 1 year. So they yesterday in

0: The early hours of Tuesday, they tried trespassing Jantar Mantar, which has now been denotified as the official protest site, using a private premises. So keeping these things into consideration, they were sent to 5 days of judicial custody. They were called repeated offenders. And now coming back to what legal options lies ahead of them, one legal option that lies ahead of CJP leadership and also their legal team is that they can approach the court regarding their bail if the court agrees to hear any bail hearing and also goes ahead with granting bail to the said two CJP leaders. Then they will have the option of walking out of Tihar jail even before they complete their 5 days of judicial custody.
1: All right, Soumya, thanks for tracking the developments there in the national capital. You have both the CJP leaders in 5 day judicial custody and they are inside Tihar jail. Moving on now, let's just take you through the other developments on the story. Politics has erupted over the arrest of CJP leaders Saurabh Das and Ashutosh Ranka. Rahul Gandhi and other opposition leaders have slammed government over their arrest. Rahul Gandhi has slammed their arrest and said that Jantar Mantar belongs to people and no one can be jailed for unfurling the tricolour or holding peaceful protests. The DMK, the Sena UBT, the Mamata Banerjee faction of the TMC all have called out the government. Former Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin has said that they will provide all kind of support to the CJP leaders, whereas Mamata Banerjee's TMC's faction's MP Abhishek Banerjee called this Pakistanified of Bharat. Meanwhile, Delhi Chief Minister Rekha Gupta lashed out at CJP and called them the B team of the Aam Aadmi Party and said that they have never raised issues related to the state of Punjab.
2: देखिए ये अराजक पार्टियां हैं और अराजक नेता हैं. कभी वो रिपोर्टर को मारते हैं जो बेचारी प्रेग्नेंट है, कभी वो पुलिस पे हाथ उठाते हैं, कभी अपने ही कार्यकर्ता को पीटते हैं. इन्हें केवल मैं में संतुष्टि है, ये दिखने चाहिए, इनकी बात केवल होनी चाहिए, सत्ता में बैठने चाहिए. इसके अलावा देश की सेनाओं पे ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, देश की पुलिस पे ये हाथ उठाते हैं, रिपोर्टर्स की आवाज ये बंद करते हैं और आम जनता का सदैव ये नुकसान करते हैं.
3: कोई भी विरोध में उठी हुई आवाज भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं और उससे डर जाते हैं, तो ये उस पर वो कदम उठाते हैं जो सख्त होता है और सख्त के साथ डराने वाला. अब कि उनका सामना ऐसे विपक्ष से कांग्रेस के नेतृत्व में पड़ा है जो ना आपकी पुलिस से डरती है, ना आपकी गोलियों लाठियों से डरती है, ना आपके पेलेट से डरती है. हम भारत के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, वोटिंग राइट को बचाने के लिए तब तक संघर्ष करेंगे जब तक आपने बेईमानी से चुनाव जीतने के लिए जिस ज्ञानीस का इस्तेमाल किया वो हट नहीं जाता, बैलेट पेपर दोबारा नहीं आता, SIR समाप्त नहीं हो जाती, हमारा संघर्ष जारी है.
1: A showdown is brewing over Jantar Mantar in the national capital after Delhi police denotified the iconic protest site. The Congress and other opposition leaders have hit out, with Rahul Gandhi vowing to challenge the decision, saying people must have the right to express their democratic concerns. The police say the move follows the Supreme Court direction to identify alternate protest venues. But with opposition leaders demanding Jantar Mantar to be reopened, the battle over where people can protest is clearly far from over. Ramlila Ground, Burari Ground and CBD Ground named as alternative venues. The police are yet to issue SOPs on the protests that can be held there. And activists say Jantar Mantar's proximity to Parliament is crucial to making their voices heard.
4: देखिए, डिसाइडेड तो अभी तुरंत नहीं है कि क्या डेट होगा क्या होगा, क्योंकि उनका कहना है कि जो भी फाइनल होगा सभी पार्टी लीडर्स से बात करने के बाद ही होगा. लेकिन एक मुद्दा नया आया है जिसको लेकर आने वाले दिनों में प्रोटेस्ट होगा, जो है जंतर मंतर को बंद कर दिया जाना. क्योंकि देखिए, इतने वर्षों से जंतर मंतर एक ऐसी जगह है देश की राजधानी में दिल्ली में, जहाँ पर आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग या ट्रेड यूनियन के लोग, स्टूडेंट्स सभी आते हैं और अपनी बात रखते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं. अब केंद्र सरकार जिस तरह से उसे बंद करके कोई और वेन्यू बता रही है, रामलीला मैदान और कहाँ कहाँ, कि वहाँ जाके प्रोटेस्ट करो. वहाँ पे रामलीला मैदान तो ऐसे भी सालों भर बुक्ड रहता है, एक आध दिन कहीं महीने में खाली है, फिर उसमें 1 लाख से ऊपर का पर डे का चार्ज रखा गया है.
5: गवर्नमेंट डी नोटिफाइड जंतर मंतर, वी स्ट्रांगली कंडम. दिस जंतर मंतर शुड रिमेन एज प्लेस फॉर अवर प्रोटेस्ट बाय द पीपल।

0: एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। ऐसे में विपक्ष को अगर शिकायत है तो एक बार कम से कम प्रयास तो करें, जैसे सीजेआई से जा मिलने का इन लोगों ने प्रयास किया, सीजेआई ने स्पष्ट कहा कि मामला विचाराधीन है, मुलाकात नहीं हो सकती। महामहिम से इन लोगों ने मुलाकात की, एक बार चुनाव आयोग ने जाकर मुलाकात प्रतिनिधि मंडल के साथ कर कम से कम अपने प्रश्नों का जवाब तो लेने का प्रयास करें। सिर्फ सड़क पे विपक्ष के द्वारा इस तरीके का हंगामा किए जाना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और आपको समाधान नहीं चाहिए तो ये विपक्ष की सोच भी गलत है। दिल्ली को बंधक इन लोगों ने इतने दिन से बना के रखा हुआ है।
1: A political firestorm has erupted over Home Minister Amit Shah's 2029 poll win remark ahead of the Lok Sabha elections in 2029. The Union Minister has predicted a massive victory for the NDA. Amit Shah has also targeted Rahul Gandhi, saying the Congress is headed for its fourth consecutive defeat. Pawan Khera from the Congress has questioned the Home Minister's confidence about the 2029 verdict. He has also raised questions about the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar's tenure. He asked how Shah could be so confident of a victory in 2029 and challenged the Home Minister to step out onto the streets and witness public anger without police presence.
2: Rahul Gandhi ji ko batana chahta hun ki Rahul Gandhi ji SIR ke bahane ghuspethiya bachane ka aapki jo karya yojana hai usko desh ki janta bhali bhanti samajh chuki hai aur ab भारत की जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है। श्री राहुल जी और उनके साथियों को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 29 में प्रचंड हार के लिए फिर से एक बार मन बना लीजिए। 2029 के आम चुनाव में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आने वाला है और कांग्रेस की फिर से एक बार लगातार चौथी बार हार होने वाली है।
3: He can dream anything, but that are going to be the nightmare for him. Because what if it's going to happen in this country? No need to wait for 29. Before that itself, change will come in India. People are now asking for a change. Therefore, you see the body language of Amit Shah yesterday. If any confidence is in this, only he is meeting you people only. There is no question by you. You are asking so many questions to Rahul Gandhi every day. But any question allowed to him by Amit Shah? Because he is not having any courage. Yesterday that also established.
4: अब यूं तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आते आते बहुमत लाते लाते 50-60 साल लग गए, फिर क्या कहें हम? ये अजीब सी टिप्पणी है साहब कि कांग्रेस कई राज्यों में इतने सालों से, भाई आप तो देश में कितने सालों तक नहीं थे, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? फिर कहते हैं 29 भी हम जीतेंगे, क्यों इतना भरोसा है ज्ञानेश पर? और ज्ञानेश रहेगा 29 तक? ये चुनाव आयोग जिस तरह से चल रहा है, हम चलने देंगे 29 तक? कि इतना भरोसा हमारी बात साबित करते हैं ये बात कहकर, तो वो कि 29 में भी हम जीत रहे हैं? कैसे जीत रहे हो साहब? सड़क पर तो निकलकर देखो, गुस्सा तो देखो लोगों का, आकर हटाओ पुलिस और आकर देखो गुस्सा।
1: We're going to go back to Punjab, where I believe that there are locals who burned the accused home, the man who shot the Punjab anti-drug activist Parvinder Singh Jota. This is Ashwini Kumar's home that we're talking about. Remember, just some time back we brought you live visuals of the JCB that was breaking down his home, but locals in the area expressing their anger there and setting fire to the home of the accused. The main accused in the murder of the anti-drug activist Parvinder Singh Jota was arrested from Rajasthan a day after the activist was shot dead in daylight in Punjab's Mansa district. These visuals are also from Mansa. And also Ashwini Kumar, a medical store owner who shot Jota, was taken into custody from Salasar in Rajasthan. The arrest was made during a joint operation by the Punjab and Rajasthan police. Remember, Jota was shot dead on Tuesday after confronting Ashwini Kumar over the alleged sale of drugs to an elderly man. The incident took place while the activist was hosting a live session on social media. Those are the shots that we're getting to you live from Mansa. I have my correspondent also, Gurpreet, joining us live. Gurpreet, live visuals that you bring to us from Mansa.

0: जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट।
1: हमारे सरमनज, हमारा दीन जो है, जो जुमा का खुतबा हमारा होता है, जिसमें हमारे इमाम और खतीब जो बहुत ही नॉलेजेबल हैं, वो उस दिन सरमन देते हैं। उसमें एक तो हमारा जो खुतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है, उसके बाद हमारे इमाम और खतीब बात करते हैं अपने जो उनका ऑडियंस होता है, ऑडियंस होते हैं जो नमाज पढ़ने वाले आते हैं, उनसे वो बातचीत 2-5 मिनट करते हैं। उन्होंने एक जुबान में कहा कि समाज में वाकई प्रॉब्लम्स है, हमें इस पे बात करनी चाहिए, और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के साथ वो है। ये वो इंडिपेंडेंट स्कॉलर्स जो हमारे प्रीचर्स हैं, जो हमारे सरमन्स देते हैं, ये उनका डिसीजन है कि हम समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे।
2: जो वो मौजूआत उन्होंने तय किए हैं, जो वो तय करें, अगर वो किसी हद तक वाकई में मुखलिस हैं, तो उसके लिए फिर मैं ये कहूँगा कि शायद मुत्तफिका उलमा कॉन्फ्रेंस जो है हमारी JNK में, यानी फिर उसमें हर खित्ते के उलमा को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। नहीं, मंजूर नहीं। हमें जहाँ तो ये है जो खदशात हैं वो दूर किए जाएं। अगर वो खदशात उन्होंने उस वक्त ऑनलाइन भी हमने जो सवाल किए थे उन्होंने दूर नहीं किए, बल्कि हमें चुप करा दिया, अगर उसी वजह से ज़्यादा हमें खदशात कुछ लग रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं वापस उन्हें।
3: पहले बोला UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसी तरह आप यूनिफॉर्मिटी इसमें भी, ये देखिए ये मस्जिदें जो हैं, ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है एक, ये मस्जिदें जो बनी हैं ये हमारे अकीदे के पैसे से बनी हैं, और यहाँ मौलवी जो हैं, जो इमाम हैं, वो जानते हैं उनको क्या बात करनी है। तो अब ये एक ऐसा सिलसिला चालू करना चाहते हैं जिससे BJP के दफ्तर से, RSS के दफ्तर से इंफॉर्मेशन आएगी कि आज के खुतबे में हमारे मौलवी साहब क्या बोलेंगे। ये तो किसी तरह से हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये जो वक्फ बोर्ड है, पहले भी हमने जो वक्फ बिल आया था उसके खिलाफ हमने रेजोल्यूशन लाया असेंबली में, हम उसकी मुखालफत करते हैं। और किसी भी पार्टी को, किसी भी सरकार को ये हक नहीं है कि वो किसी भी दीन में चाहे उसमें इस तरह की मुदाखलत करें।
4: ये कैसा एक ऑर्डर है कि जहाँ आज आप इमामों को, हमारे खतीबों को भी ये बोलेंगे कि आपको बोलना क्या है। तो मुझे लगता है बड़ा अफसोस की बात है। अब BJP डिसाइड करेगी कि हमारे मेंबर पे क्या कौन से खुतबा होगा। मुझे लगता है ये बिल्कुल इस ऑर्डर को वापस ले जाना चाहिए। और दूसरी चीज़, शायद ये जो इनकी मैडम है, इनको एक आदत हो गई है कि जो ये आजकल के मौलवी हैं वो उनकी तारीफ़ करते हैं। मेंबर उसके लिए नहीं है, मेंबर है रसूल इसलिए है कि आप लोगों को जो सरकमस्टांसिस है, जो सिचुएशन है, उसके ऊपर बात करें और इस्लाम की तालीमों पे बात करें। मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, ना मैं, मुझे इसके ऊपर कोई ये है, लेकिन आम आदमी जुमा की नमाज में जाता है और खुतबा सुनता है। मैं चाहता हूँ कि मैं जब वहाँ जाऊँ मैं कुछ सीखूँ, इस्लाम के बारे में सीखूँ।
0: In disturbing news from the state of Bihar, a tragedy unfolded in Vaishali district of the state after a boat carrying 15 to 20 people who were going to attend a banquet capsized in Ganga. At least 13, including children, have died in this tragedy. The rescue operation is ongoing and the administration is monitoring the situation. Prime Minister Narendra Modi condoled the death of the victims. Bihar Chief Minister Samraj Chaudhary announced financial assistance of 4 lakh rupees for the families of the victims.
5: Right now I am sitting at the boat which took the lives of 13 people in Bihar's Vaishali district. This is a boat, this is not an appropriate boat. As you can see, there is a vessel and that is why the boat is sank in the middle of the river, and in that incident 30 people got dead. Most of the people got injured and they are referred to the Patna, but almost more than 20 people were on board and they are going for a community fest and that side of the river. And this is a government boat provided by the Bihar government in the flood situation area. As you can see, this whole area is still flooded, but this is a very big loophole of the district administration. That is why 13 people lost their lives. But you can see that boat is not in a good condition. A vessel is right out there. That is why this boat is sank in the middle of the river. But the question is, where is the district administration? The people right out here is complaining about this boat continuously to change this boat, but no action is being taken from the district administration.
6: देखा गया है कि जिस घर में वो लोग जाना चाह रहे थे भोज के लिए, उसकी कनेक्टिविटी वहाँ जो मेन रोड है उससे है, और अगर उस रास्ते को उपयोग किया जाता तो ये दुर्घटना नहीं होती। लेकिन एक बहुत ही दुखद घटना है और इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल है उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
7: नाव को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकारी नाव थी, 3 साल से इसकी मरम्मत नहीं थी, आप क्या कहेंगे? आप जिलाधिकारी है, क्या आपके नॉलेज में था ये?
6: देखिए, ये जो रिपोर्ट हमें प्राप्त है प्रशासनिक पदाधिकारियों के माध्यम से, वो ये है कि ये प्राइवेट नाव है और जिनके नाम से रजिस्टर्ड है उसकी सूचना प्रशासन को प्राप्त हो गई है, उसके आधार पर अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पर्यवेक्षण जिन पदाधिकारियों के द्वारा किया जाना था और उनके द्वारा नहीं किया गया है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है।
0: And with that, we're skipping a short break. I'll be back with international news, especially from Saudi Arabia, given the Houthi attacks that have been continuing for a couple of days now. In moments from now, more on that with a detailed report.

0: कॉन्डक्ट लगाया हुआ है.
1: गोइंग बियॉन्ड व्हाट सेड, गेटिंग टू द रियलिटी बिहाइंड द रेटोरिक.
0: एनीवन मैसेज ऑफ यूनिट
2: हमारा स्वामी जाके जे बाबू हत्या कर ले तब फांसी दवा तो उची.
0: ऑल्सो द पुलिस एक्शन,
1: टेकिंग क्वेश्चंस वेयर दे मैटर मोस्ट.
3: द क्वेश्चन इज लैंग्वेज की हम बात करें.
1: अर्जेंट, एग्जैक्ट, empathetic.
0: There is no fire escape. There is no alternative safety route.
1: Because when it really matters, someone has to answer. The buck stops here. Weekdays, 8 p.m. only on NDTV. When it really matters.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात.
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है.
6: अरे मेरे राजा.

0: ऑफ कॉन्डक्ट लगाया हुआ है.
1: गोइंग बियॉन्ड व्हाट्स सेड, गेटिंग टू द रियलिटी बिहाइंड द रेटोरिक.
0: एनीवन मैसेज ऑफ यूनिटी.
2: हमार स्वामी जाके जे भाव हत्या कर ले ता दे फांसी दवा तो छी.
0: Also, the police action.
1: Taking questions where they matter most.
0: The question is, language ke baat kare.
1: Urgent, exact, empathetic.
0: There is no fire escape. There is no alternative safety route.
1: Because when it really matters, someone has to answer. The buck stops here. Weekdays, 8 p.m. only on NDTV. When it really matters.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात.
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है.
5: अरे मेरे राजा.

0: मिस्टर रहमान, लेट्स लिसन इन।
1: वो भी नशे के पीड़ित थे, पीड़ितों के साथ खड़े हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उन्होंने बहनों उनके माताओं की बात सुनकर जो प्रेस के बेचारे अधिकारी थे उनको भी रोना आ गया। इतना दुखदाई पंजाब में हो रहा, मैं आपको बता नहीं सकता कि आज लोग इस ये कोड ऑफ कंडक्ट की वेट करते हैं। लोगों ने, मैं आपको सीधी बात कहता हूँ, ये आम आदमी पार्टी को लोगों ने गांव में घुसने के बाहर बोला कि हम बाहर बोर्ड लगा देंगे कि यहाँ पे आम आदमी आप पार्टी एंटर नहीं कर सकता। कर्जा जो मैं कहना चाहता हूँ कि इतना खाली कर दिया उन्होंने सूबे को कि 282,000 कर्जा था तो पिछले 60 साल में, और इस सरकार ने 4.5 साल 4.5 साल में 5 लाख तक का कर्जा कर दिया। भ्रष्टाचार की, जैसे मैंने बोला कि करप्शन की हद है, इनके मुख्यमंत्री के दर तक भ्रष्टाचार पहुंच चुका है। गैंगस्टरवाद की, फरौतियों की, आजकल व्यापारी जो हैं वो भाग रहे हैं पंजाब से, जो इंडस्ट्रियों भाग रही है, आज 8 से 10 घंटे की कट लगी हुई है। ये आम आदमी पार्टी को एक ही बात आती है कि जब इन्होंने कोयले की कोई प्लानिंग नहीं की, आज 12-12 घंटे की 10-10 घंटे की पावर कट लग रहा है, इंडस्ट्री भाग रही है, तो इंडस्ट्री भागने के लिए इनको और तो कोई होता नहीं, कहता है जी सेंटर के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में है। कोयले की प्लानिंग तो इन्होंने करनी है, मुख्यमंत्री ने बोला कि मैंने पसवाड़ा में हमने कोल माइनिंग ले ली है। इन्होंने वादा किया था कि 30 साल तक पंजाब में कोई भी कोयले की दिक्कत नहीं होगी, और 4 प्लांट अभी बंद पड़े हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ, इंडस्ट्री मुश्किल है, मुलाजमों को डीए नहीं मिल रहा, मुलाजम बेचारे स्ट्राइक पे जा रहे हैं, पंजाब में मुलाजम कोई काम नहीं कर रहा है इस दफ़ा। तो मुलाजम को जो देखो, सारी भारत में 60% डीए मिला, इन्होंने सिर्फ पंजाब है, जिस भी 22 सूबों में स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर हमने 60% डीए दिया। पंजाब कहते हम 42% देंगे, वो भी 4 किस्तों में, और 4 किस्तों में भी जो पहली किस्त थी उसमें भी धोखा कर दिया, वो भी नहीं मिला। किसानों की समस्या, अब धान का सीजन आ गया मंडियों में, मैंने कल ही देखा है कि मंडियों में पानी भरा हुआ है, 3-3 फुट पानी, जो झोना जो बेचारा इतनी मुश्किल से किसान पाल कर लेकर आता अपनी फसल को, वो पानी में तैर रही है जैसे दरिया में या छप्पड़ में फैलती है। सो इन मुद्दों के साथ पंजाब में हर वर्ग दुखी है, इसलिए हम आपके पास आज आपके सामने ये चीज़ें रख रहे हैं। पुलिस थाने तक कोई सुरक्षित, पुलिस के थाने सुरक्षित नहीं है। मोहाली, तरन तारण, जैसे मैंने बोला कि जगह जगह पे आज एक कांस्टेबल इनका पकड़ा गया। तो जो मैं कहना चाहता हूँ कि पंजाब में इस दफ़ा बहुत बुरा हाल है लॉ एंड ऑर्डर का, और ऐसा ऐस की तैश हुई पड़ी है, और वहाँ पर कानून व्यवस्था ख़त्म हुई पड़ी है, गैंगस्टरवाद हैं वहाँ पर, माली हालत माड़ी है, और लोग जो हैं किसी चीज़ पे आज पंजाब में, जो पहले पंजाब नंबर एक में होता था, अनिति योग के थ्रू मैं देख रहा था कि 17वें नंबर पे हो गया। तो लोग हमारे से भी ये पूछते हैं कि आपके पास कौन सी ऐसे जादू की पुड़ी है जो आप नशा ख़त्म कर देगी। मैंने उनको बताया कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर हम यूपी में गैंगस्टरवाद को ख़त्म कर सकते हैं, और अगर हम इसके लिए जो भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा, अगर मेरे पास ये हमारे पहले मुख्यमंत्री होते थे मध्य प्रदेश के, आजकल एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो भी हमारे जो नशे की यात्रा में शामिल हुए थे, वो बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि जब मैंने टेक ओवर किया था एज ए चीफ मिनिस्टर, उन्होंने संभाला था कि मध्य प्रदेश में चंबल की घाटी में डाकू होते थे, हमने 7 दिनों में, मैंने डीजीपी को बोला कि इसको ख़त्म करना है, उसने कहा कि हम 7 दिनों में चंबल के डाकू को ख़त्म किया, और ऐसे जो झारखंड में देखो नक्सल है उसको हमने ख़त्म किया, जो J&K में 370 को ख़त्म किया। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। हमारे जो गृह मंत्री साहब आए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब आए, जलंधर में आए, उन्होंने भी यही बोला कि पंजाब को हम नीचे नहीं जाने देंगे, पंजाब को कैसे भी हो, लेकिन पंजाब का जो दर्द है आज जो आप लोग बैठे हैं, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि पंजाब का दर्द बहुत है। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसी बात नहीं है, एक जंगल राज है। तो यही कहना था मैंने आपसे, और आपका जो भी कोई सवाल हो तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम।
0: All right, the BJP, they're hitting out at the Aam Aadmi Party government in Punjab, questioning its handling of various administrative issues in the state. But remember, the big issue right now is the murder of an anti-drug activist who was killed by a chemist. Now, visuals on your screen,

0: कमज़ोर लोग या ट्रेड यूनियन के लोग, स्टूडेंट्स, सभी आते हैं और अपनी बात रखते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। अब केंद्र सरकार जिस तरह से उसे बंद करके कोई और वेन्यू बता रही है, रामलीला मैदान और कहाँ कहाँ, कि वहाँ जाके प्रोटेस्ट करो। वहाँ पर रामलीला मैदान तो ऐसे भी सालों भर बुक्ड रहता है, एक आध दिन कहीं महीने में खाली है, फिर उसमें 1 लाख से ऊपर का पर डे का चार्ज रखा गया है।
1: गवर्नमेंट हैज डी नोटिफाइड जंतर मंतर, वी स्ट्रांगली कंडम दिस। जंतर मंतर शुड रिमेन एज प्लेस फॉर अवर प्रोटेस्ट बाय द पीपल, बिकॉज़ अर्लियर राजपथ वी यूज्ड टू हैव प्रोटेस्ट, इट वाज बैन। अर्लियर वी यूज्ड टू हैव प्रोटेस्ट इन पार्लियामेंट स्ट्रीट, इट वाज बैन। नाउ

0: productivity linked bonus for railway employees. The bonus announced as a Diwali gift for the railway staff, and the total financial outlay for the bonus will be 2009 crores. 37,000 permanent jobs have already been provided in the railways. This was announced by Union Minister Ashwini Vaishnaw.
1: कैबिनेट में आज सबसे पहले रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए, स्टाफ के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, 78 दिनों का बोनस, 78 डेज का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए, जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो कि हम लोग जब त्यौहार में रहते हैं तब वो फील्ड में, ट्रैक पे, लोगों के अंदर, वर्कशॉप के अंदर दिन रात मेहनत करते रहते हैं। उन सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए ये दीपावली का उपहार है। करीब 2009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है, 2009 करोड़ रुपए का। रेलवे में मैसिव रिक्रूटमेंट चल रहा है, भर्तियाँ करीब 1,65,000 भर्तियां निकली हुई है, जिस पर एग्ज़ाम लगातार चल रहा है। अब तक करीब करीब 37,000 एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, पक्की नौकरी दी जा चुकी है रेलवे में इसी पिछले कुछ समय में ही।
0: All right, so Diwali bonus for the railway employees, lucky them, and that's it from me for the moment. News and updates continue right here on NDTV. Thanks so much for watching.

0: कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगाया हुआ है.
1: गोइंग बियॉन्ड व्हाट सेड, गेटिंग टू द रियलिटी बिहाइंड द रेटोरिक.
0: एनीवन मैसेज ऑफ यूनिट
2: हमार स्वामी जाके जे बाबू हत्या कर ले तब फांसी दवा तो उची.
0: Also, the police action.
1: Taking questions where they matter most.
0: The question is, language kya baat kare?
1: Urgent, exact, empathetic.
0: There is no fire escape. There is no alternative safety route.
1: Because when it really matters, someone has to answer. The buck stops here. Weekdays, 8 p.m. only on NDTV. When it really matters.

सेंटेंस हुआ है मुस्कान को और साहिल को यहीं पर हुआ है। दरअसल जिस तरह से लगातार जो सौरभ के घर वाले ये मांग कर रहे थे कि इस पूरे मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना जाए और मुस्कान और साहिल को सजाए मौत हो, तो उसके तमाम इस पूरे मामले में जो एविडेंस है और जिस तरह से हत्या के बाद सौरभ के डेड बॉडी के साथ में जो किया गया, जिस तरह से क्रूरता हुई, उसको देखते हुए कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना और इस मामले में मुस्कान और साहिल को फांसी की सज़ा सुनाई है। आमतौर पर यहाँ पर उम्मीद ये थी कि शायद उम्र कैद हो

0: हिमाचल प्रदेश निकल गए और वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक रहे। दोनों के लगातार वीडियोज़ भी वहाँ पर सामने आए और इसके बाद 17 मार्च 2025 को दोनों वापस लौटे। वापस लौटने के बाद मुस्कान ने अपनी माँ से कहा कि उसने अपने हस्बैंड सौरभ की हत्या कर दी है और उसके बाद पुलिस ने मुस्कान और साहिल को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद मुस्कान की निशानदेही पर, मुस्कान के ही कहने पर सौरभ की डेड बॉडी उसके घर से बरामद हुई जो कि एक नीले ड्रम के अंदर थी। उसके बाद सौरभ के शव का पोस्टमार्टम हुआ जिससे एस्टेब्लिश हुआ कि मरने वाला सौरभ था और उसके बाद पुलिस ने मुस्कान और साहिल को अरेस्ट किया। उसके बाद ये मामला लंबे समय तक कोर्ट में चलता रहा जिसमें पुलिस ने काफ़ी अहम एविडेंस कोर्ट में रखे, जिसमें साहिल और मुस्कान की जो लोकेशन थी, उनके कॉल रिकॉर्ड थे, उनके बीच में जो मैसेज एक्सचेंज हुए जहाँ से वो नीला ड्रम, बर्तन और चाकू लेकर आए थे, नशीली दवाएं लेकर आए थे, उन तमाम दुकानदारों के बयान, साथ में जहाँ जहाँ पर ये घूमने गए थे उन तमाम होटल मालिकों के स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए गए। तो इस तरह से काफ़ी साइंटिफिक एविडेंस थे जिसके बेसिस पर ये कोर्ट को ये केस कोर्ट में प्रूव हुआ और बाद में आज इस केस को अदालत ने, कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना और महाभारत का जिक्र करते हुए कहा कि धर्म में अपराधियों का विनाश करना भी ज़रूरी है और इस तरह से दोनों ही लोगों को डेथ पेनल्टी जो है वो दे दी। जी
1: जी धन्यवाद मुकेश एंड थैंक्स अकील फॉर शेयरिंग दोस लेटेस्ट अपडेट्स हियर विद अस। रेयर केस विद डेथ पेनल्टी हैज नाउ बीन अनाउंस्ड टू मुस्कान एंड अ लवर साहिल। Shifting our focus to other news right now, CJP leaders Ashutosh Ranka and Saurav Das have now been sent to Tihar jail for 5 days after being arrested for protesting at Jantar Mantar. Well, they were produced before a magistrate at the SEM court located at Mandir Marg police station. Both the leaders were arrested on the charges of trespassing and violation of previous arrest bond. Remember, 14 Cockroach Janata Party members were detained yesterday for trespassing and scaling walls of Jantar Mantar. CJP founder Abhijit Dibke has now spoken out on the streets. He's back here in New Delhi and he called this a cowardly attack and an attempt to crush dissent. As per Delhi police, Saurav Das and Ashutosh Ranka are repeat offenders and they have now breached the bail bond as well.
2: Is desh mein tiranga lehrana kya apraadh hai? आशुतोष और सौरभ को 5 दिन के लिए जेल में भेजा गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जंतर मंतर पर जाकर तिरंगा लहराया। ऐसा आखिरी बार तब हुआ था जब हम पर अंग्रेजों का राज था। आपको पता होगा आज आशुतोष, सौरभ दास और मैं और हमारे साथ सीजीपी के वॉलंटियर्स हम जंतर मंतर की ओर गए थे और हमने बस भारत का झंडा लहराया और भारत माता की जय बोला। तो इसके लिए इस मोदी शाह के तानाशाही सरकार ने सौरभ और आशुतोष को 5 दिन के लिए जेल में भेज दिया है। ये तानाशाही सरकार का अंत होके रहेगा। आज आशुतोष का बर्थडे था, उसके बर्थडे के दिन उन्होंने भारत माता की जय और तिरंगा का झंडा लहराने के लिए उनको जेल में भेज दिया है। मेरा ये पूरे देश की जनता से कहना है कि इस सरकार ने अपने सिस्टम का यूज करते हुए, अपने अधिकारों को, गलत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट्स का तोड़ने की कोशिश शुरू की है। मेरा आपसे कहना है कि हम सबको एक साथ आकर इस तानाशाही सरकार का अंत करना होगा।
3: दिल्ली पुलिस की तरफ से ये दलील दी गई कि इन्होंने जो इनका बॉन्ड था उनका वायलेशन किया है। इनको उनका प्रेजम्पशन है कि ये फिर से ऐसा कर सकते हैं और जो इन्होंने किया है वो कानून का उल्लंघन है, 163 का उल्लंघन है। उनके हिसाब से पहली बार एक उनका कहना है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को ट्रेसपास किया गया है विदाउट प्राइवेट कंप्लेनेंट फाइलिंग दी कंप्लेंट। दिल्ली पुलिस ने खुद कॉग्निजेंस ले लिया है और उसके अगेंस्ट एक एक्शन लेके और जिस केस के रेफरेंस में जो उसके लिए सेपरेट कंप्लेंट फाइल हुई है, जो बताया गया है कि कनॉट प्लेस में उसमें सेपरेट कंप्लेंट फाइल हुई है, उसको यहाँ पे यूज़ करते हुए, इसका मिसयूज़ करते हुए अपनी पावर अथॉरिटी का 5 दिन की जेसी में भेजा है।
1: So we're looking at the Jantar Mantar showdown at this point of time. That's because Jantar Mantar has, of course, been denotified as a protest ground. The denotification was sent on October 11th. The reason given by the government was that require proper infrastructure and basic amenities, which is perhaps not there at Jantar Mantar. Now, the new protest site are 3 which have been allocated: Ramlila Ground, Burari Ground and CBD Ground all the way to East Delhi. This is what the government has said. But so far, CJP protest and arrest. The leaders are adamant of the Cockroach Janata Party to protest at Jantar Mantar.

0: I want to very quickly at this moment go across to Mr. Uday Bhanu Cheb. He is the president of the Indian Youth Congress. He's joining us at this moment. He has filed this petition. Thank you so much, Mr. Cheb, for speaking to us. I want to understand from you, what is your prayer as far as this petition in the High Court is concerned, and what has the, when will it be taken up in the court?
1: So it is very simple, that to protest in Jantar Mantar is our right, constitutional right. और कोई भी गवर्नमेंट हमसे ये राइट नहीं छीन सकती। अगर आज नरेंद्र मोदी जी को लग रहा है कि उन्होंने बहुत गलतियां कर दी हैं और लोग उनकी गलतियों को, उनकी चोरियों को रेस कर रहे हैं और जंतर मंतर छीन कर वो बच जाएंगे, तो वो गलतफहमी में है। जंतर मंतर किसी का भी नहीं है, वो हमारे देश के लोगों का है, हिंदुस्तानियों का है। और अगर कोई भी लॉ बनाकर जंतर मंतर छीन रहे हैं, इससे पता चलता है ये सरकार, बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी जी, वो डरे हुए हैं। और हमें दबाने के लिए, प्रोटेस्टर्स को दबाने के लिए, देश के यूथ और स्टूडेंट्स की आवाज को दबाने के लिए चीजें कर रहे हैं। जंतर मंतर से क्या प्रॉब्लम है? आप प्रोटेस्ट
0: लेकिन
1: दबाना चाहते,
0: लेकिन छिप साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार ने कहा है कि भाई, शुरुआत में राहुल गांधी और आपकी पार्टी की मांग ये थी कि आप लोग चाहते थे कि एक कोई प्रोटेस्ट साइट आपको दिया जाए ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने में। सरकार कह रही है 3 प्रोटेस्ट साइट हमने दिए हैं, आप उनमें से कोई भी चुन सकते हैं, तो जंतर मंतर को ही क्यों इसका बैटल ग्राउंड बनाया जा रहा है?
1: नहीं, हम स्टार्टिंग से कह रहे हैं हमें जंतर मंतर चाहिए। 25 सितंबर को यूथ कांग्रेस ने एप्लीकेशन दिया था पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में कि हमें जंतर मंतर चाहिए, 20 दिन के लिए चाहिए, हमें वहां पे प्रोटेस्ट करना है, पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। अब वो उनके ऊपर है, वो हमें 2 दिन के लिए दें, 20 दिन के लिए दें, लेकिन दें तो। लेकिन 1 अक्टूबर को उन्होंने हमारी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी। उसके बाद ये जुडिशियल में भी ये हमने केस किया कि जंतर मंतर हमारा राइट है, तो उसके बाद इन्होंने ये लॉ ही ऐसा बना दिया कि रिडिफाइन कर दिया कि जंतर मंतर नहीं मिलेगा, तो ये गलत है। इससे पता चलता है कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और डरी हुई ये सरकार है।
0: Okay.
1: लेकिन जंतर मंतर को हम रिक्लेम करेंगे, दिस इज अवर राइट।
0: सो हैज दिस हैपेंड आफ्टर जो राहुल गांधी ने कल कहा था कि जंतर मंतर को भी वापस देने की लड़ाई जारी रहेगी, उसके बाद आपने ये फैसला लिया है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मुझे लगता है काफी 10-15 दिन से ज्यादा समय हो गया, आई थिंक 10-15 दिन से पहले का टाइम है जब हमने ये किया। और राहुल जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, आज भी हम जंतर मंतर मार्च करने वाले थे, लेकिन साथ ही साथ दिल्ली पुलिस का जो वायलेंस चल रहा है पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर,
0: okay.
1: तो फिर हमें पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन का घेराव करना पड़ा, नहीं तो आज भी हमने पूरा कोशिश था कि जंतर मंतर को रिक्लेम करें, जिस तरह से राहुल जी कह रहे थे।
0: All right, thank you so much, Mr. Cheb, for joining us on NDTV. He's the petitioner as far as this application is concerned. My colleague, Srishti, is joining me at this moment. Srishti, politically, of course, the parties have been saying, whether it is the CJP, the Aam Aadmi Party, the Congress, now the IYC as well, that Jantar Mantar is something that they would want to reclaim. What happens after this petition has been filed? When it will be taken up? And is there a legal way to, in fact, try and get this denotification junked for Jantar Mantar?
2: Well, Ankita, Mr. Cheb himself just said they want to reclaim Jantar Mantar as a designated protest site, which is also something that they have said in their application, that Jantar Mantar should be a designated protest site. Now, this is an application that he's ready, a pending petition before the High at Jantar Mantar. Now, interestingly, we have another petition which has already been filed before the Supreme Court also. This petition has also challenged this particular standing order issued where Jantar Mantar will no longer be a designated site. Now, according to them, what these petitions have claimed is that when you relocate a protest site to a distant outlying area, the very right to peaceful assembly and freedom of speech expression might be rendered ineffective. The practical impact that a protest is supposed to have, the impact that it's supposed to have on the public, on the people, might not be as much if it is completely distant. They have the plea before the Supreme Court also, in fact, uses the word out of sight and out of mind. So the impact that a protest is supposed to have, it will not have that impact if it is held at a distant location. Now, the plea before filed before the Supreme Court is is expected. There's a possibility it might be taken up tomorrow because we have a batch of pleas regarding the protests already listed tomorrow before the Supreme Court. So if the Supreme Court decides to go ahead and hear the matter, then the High Court may not, take that up. So we, it's something that we'll have to wait and watch and see if this SEA decides to intervene in this issue in any way or not, or does it send the matter back to the High Court? Back to you.
0: Thank you, Shrishti, for joining us with all those details. Remember, it was somewhere the government would say it was after the nudge by the court itself, and it said that they should think about other places of protest that they had gone ahead and denotified Jantar Mantar. Let's move on from there. Asutosh Ranka and Saurav Das, the co-conveners of the Cockroach Janata Party, who yesterday jumped from the JDU office in Jantar Mantar, waved a flag and said that they have reclaimed the protest side, were arrested today in the morning after being detained and have been sent to judicial custody. Now, their judicial custody, if the government has sent them to Tihar prison, in a way has now snowballed into some sort of unity of the opposition coming towards the CJP, and it all started with, of course, the significant one from the Congress party, because so far the Congress party, more or less, Rahul Gandhi himself has stayed on the sidelines. They have not named CJP while they were talking about all these protests. But today, quote tweeting a tweet which mentioned them, Rahul Gandhi said, waving the tricolor at Jantar Mantar in a peaceful protest is not a crime. Jailing youth for it is an act of cowardice. Students, youth, journalists, the India Bloc, different banners, one cause, all protests are one, citizens demanding their constitutional right. Jantar Mantar belongs to the people of India. We will reclaim it. Now, this triggered a thank you a post by Abhijit Dibke, who is the convener of the CJP. Thank you, LOP Rahul Gandhi, sir, for speaking out against the illegal arrest of Asutosh Ranka and Saurav Das. There have been other political leaders like Mamata Banerjee, Arvind Kejriwal, Supriya Sule. All of them have expressed support to the CJP leaders. But does that mean that in a way now this is galvanizing and bringing the opposition together? Because there was India Bloc, and then there was CJP and the Aam Aadmi Party, which was also protesting. Cause was the same, but the protests were different. Is that now coming together, and how will it impact the political, in fact, circumstances? We will have to wait and see. We will discuss that. But there is news coming in at this moment. Abhijit Dibke has called on his supporters. Abhijit Dibke has urged his supporters, and they have given a protest call. This is a new protest call which has been given for October 16th. Abhijit Dibke has called on supporters for October 16th protest. Dibke has urged them to unfurl the tricolour. He has said that unfurl tricolour at Central Park in Connaught Place. So not Jantar Mantar, but at in CP, that they have asked their supporters to come together and unfurl the national flag. Let's listen into what Abhijit Dibke has said.
3: Hello everyone. जैसे कि आप लोगों को पता है, सौरभ और आशु को बस तिरंगा लहराने के लिए जेल में डाला गया है। तो मैं सभी देशभक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग तिरंगे से प्यार करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, 16 अक्टूबर को शाम को 5 बजे आप सब सेंट्रल पार्क कैनॉट प्लेस में आइए तिरंगे के साथ। वहां पर हम अपना तिरंगा लहराएंगे और हम बता देंगे कि वेविंग अ तिरंगा इज नॉट अ क्राइम। और जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते, वो अपने अपने शहरों में शाम को तिरंगा मार्च निकालिए और बता दीजिए इन लोगों को, इन तानाशाह को, कि हमारा तिरंगा हमारा प्राइड है और उसे लहराना कोई।
0: So Abhijit Dibke's new call, unfurl the national flag, will he himself be there or not? Will the government allow that or not? We will have to wait and see. But October 16th is the new call of protest, that too at Connaught Place Inner Circle. Now, I want to very quickly, ladies and gentlemen, as all these leaders, opposition parties are coming together, they accuse the BJP of trying to stifle and suppress democracy, dissent. Rahul Gandhi called the act of arrest of these two co-conveners of this Cockroach Janata Party as cowardice. M.K. Stalin, who has maintained his distance from the India Bloc, also supported the CJP. So did Mamata Banerjee, Arvind Kejriwal, Aditya Thackeray. Now, Delhi police has cited multiple grounds for the arrest of Saurabh Das and Asutosh Ranka, including allegedly entering Jantar Mantar without permission, defying prohibitory orders, obstructing police personnel and breaching earlier peace bond conditions which they had given when they were under detention on 10th of October. Meanwhile, the protests have continued in Delhi with Youth Congress workers trying to march towards Jantar Mantar, while SFI and DYFI workers were detained who wanted to join the march demanding the resignation of the CEC. The BJP has hit back with Delhi Chief Minister Rekha Gupta accusing the opposition of working together to disrupt the city.
4: और जो पुलिस वाले हैं, मैं आपको प्यार से कहना चाहता हूं, दिल से प्यार से. देखिए, मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि वीडियो के साथ आप रिकॉर्ड रखिए. इन सबको कहा है और हर स्टूडेंट को मैं कह रहा हूं, आप वीडियो बनाइए, एविडेंस रखिए और एविडेंस हमारे पास भेजिए. जब ये पूरा का पूरा मामला खत्म होगा तो फिर पूरा एविडेंस का हम प्रयोग करेंगे और जिनको सजा देनी होगी सबको सजा देंगे, ज्ञानेश कुमार से लेकर ऊपर से नीचे तक. नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और जो भी मतलब कांस्टेबल हमारे बच्चों पे हाथ उठा रहा है, सारा का सारा सबूत आप रखिए बस, और घबराइए मत.
5: ये राहुल जी अक्सर राजनीति हर चीज़ में ढूंढने का प्रयास करते हैं. जब आप बड़े आंदोलन की सोच के साथ आप जाते हैं तो ज़रूर कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी घटना की जानकारी सामने आती है जिसको अगर मैं सही नहीं भी ठहराता तो मैं ये भी मानता हूँ कि भीड़ और उस वक्त का जो माहौल होता है उसमें संभवतः ऐसी चोटें या इस तरीके की घटना सामने आ जाती है.
4: ये हिंदुस्तान है, अमित शाह जी इसको अच्छी तरह देख लीजिए. यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई किसी जात का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है. एक आवाज है, एक प्रोटेस्ट है, हिंदुस्तान की आवाज है और आप इस आवाज के सामने खड़े हो और प्रधानमंत्री जी इस आवाज के सामने खड़े हैं. मैं आपको सुझाव देता हूं, इस आवाज के सामने खड़े मत होइए. इस आवाज के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है.
6: आप देखिए राहुल गांधी किस तरह से तिरंगे का इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं तिरंगे, और किनको लगता है कि तिरंगे की आड़ में वो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जाएंगे, संविधान के खिलाफ जाएंगे, बावजूद इसके कि बाकायदा बॉन्ड दी है सौरभ दास और ये सीजेपी के जितने भी साथी हैं, उसके बावजूद आप फांद कर दीवारें आप पहुंचेंगे उस साइट पर और बाकायदा तिरंगे की आड़ में आप देश के कानून को तोड़ेंगे. ये बात चाहे ट्रेसपासिंग की है,
4: FIR होगा, प्रेशर करना है, क्या करना है. एक प्रोटेस्ट है, एक आवाज है, देश की आवाज है और उस आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है. मैंने कल आप प्रेस वालों से पूछा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, परसों सॉरी, कि आप में से कोई सोचता है कि नरेंद्र मोदी जी सही काम कर रहे हैं. और आपने पहली बार बिना डरे सच्चाई देश को दिखा दी. तो मैं आपको भी प्यार देना चाहता हूं और आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूं. थैंक यू.
7: आखिर अमित शाह जी क्यों कह रहे हैं कि आज वो नेता प्रतिपक्ष है, वो देश के किसी जनता के मुद्दे के बजाय संवैधानिक संस्थाओं को पे कुठाराघात कर रहे हैं, अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं. कभी कोई राजनीतिक पार्टी सुप्रीम कोर्ट में मार्च करती थी, चीफ जस्टिस को ज्ञापन देने जाती थी? सेपरेशन ऑफ पावर है संविधान में, न्यायपालिका एक निष्पक्ष स्वतंत्र आर्गन है. आपको विरोध करना है तो सरकार का करिए, प्रशासन का करिए.
0: So has this once again given Philip, because remember India Bloc has already announced some sort of a pause as far as their protest is concerned, has this arrest given that Philip to the opposition to come together once again, renew the street fight? Let me go across at this moment to Bhupen Chaubey, consulting editor NDTV. We are also being joined by Charu Pragya, spokesperson of the Bharatiya Janata Party. Anuma Acharya, spokesperson of the Congress Party, is also with us. Thank you so much to all of you for being with us. Bhupen, let me begin with you. India Bloc yesterday announced some sort of a pause. Rahul Gandhi said that this is now decentralization of the protest. It will go across to other cities. But Delhi, at least for India Bloc, was not in the agenda for the next few days. Now, the arrest of these activists, has that given, this fragmented few of them, like CJP was on the sidelines, Aam Aadmi Party was on the sidelines, though on the same issue, A, to come together, and B, once again, the momentum to continue their fight on the streets?
8: Well, what is happening now very clearly, and from what I gather by speaking to senior Congress leaders, is that the core circle of Rahul Gandhi

0: कॉन्डक्ट लगाया हुआ है.
1: गोइंग बियॉन्ड व्हाट सेड, गेटिंग टू द रियलिटी बिहाइंड द रेटोरिक.
0: एनीवन मैसेज ऑफ यूनिट
2: हम सामने जाके जे भाव हत्या कर ले तब फांसी दवा तो उचित.
0: Also, the police action.
1: Taking questions where they matter most.
3: The question is, language ki hum baat kare.
1: Urgent, exact, empathetic.
0: There is no fire escape. There is no alternative safety route.
1: Because when it really matters, someone has to answer. The buck stops here. Weekdays, 8 p.m. only on NDTV. When it really matters.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात.
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है.
4: अरे मेरे राजा.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे,
3: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे द शार्पेस्ट ग्लोबल वॉइसेस डिकोड अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स डॉक्टर स्वर्णिम वागले जनरल डेविड पेट्रियस स्वामी सर्वप्रियानंदा माइक वॉल्श निकोलस बक्स At the NDTV World Summit, A World Between Orders, 22nd and 23rd October, only on NDTV. मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
1: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग चार लोगों के पास है
2: कुछ इससे भी अनोखा
1: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला

0: going beyond what's said, getting to the reality behind the rhetoric.
1: Also,
0: the police action. Taking questions where they matter most.
2: The question is, language kim baat kare?
0: Urgent, exact, empathetic.
3: There is no fire escape. There is no alternative safety route.
0: Because when it really matters, someone has to answer. The buck stops here. Weekdays, 8 p.m. only on NDTV. When it really matters.
4: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे
5: बोझे पेंट्स रंग बना रहे
6: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से
7: देश का टायर जेके टायर
8: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात
9: वाओ मामा क्या स्वाद है
10: अरे मेरे राजा

0: A verdict can change a business. A law can reshape an industry. A regulation can create an opportunity or a risk. Because what happens in courts could have a direct impact on your business. Join me as I decode what legal decisions mean for markets, businesses, and investments. Closing argument, only on NTD Profit.
1: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे द ओनली फीमेल बेसिस्ट टू बी रैंक्ड अमंग म्यूजिक रेडार्स टॉप 10 बेसिस्ट्स ऑफ द 21st सेंचुरी फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड स्टेज मोहिनी दे हैज मेड द बेस हर वॉइस मीट हर एट द एनडीटीवी वर्ल्ड समिट अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स 22nd एंड 23rd अक्टूबर न्यू दिल्ली मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
2: जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है
1: द शार्पेस्ट ग्लोबल वॉइसेस डिकोड अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स डॉक्टर स्वर्णिम वागले General David Petraeus, Swami Sarvapriyananda, Mike Walsh, Nicholas Butts, and the NDTV World Summit, A World Between Orders, 22nd and 23rd October, only on NDTV.

0: कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगाया हुआ है.
1: गोइंग बियॉन्ड व्हाट सेड, गेटिंग टू द रियलिटी बिहाइंड द रेटोरिक.
2: एनीवन मैसेज ऑफ यूनिट
3: हमार स्वामी जाके जे भाव हत्या कर ले तब फांसी दवा तो छी.
2: आल्सो द पुलिस एक्शन,
1: टेकिंग क्वेश्चंस वेयर दे मैटर मोस्ट.
4: द क्वेश्चन इज लैंग्वेज की बात करें.
1: अर्जेंट, एग्जैक्ट, एम्पैथेटिक.
2: देयर इज नो फायर एस्केप, देयर इज नो अल्टरनेटिव सेफ्टी रूट,
1: बिकॉज़ व्हेन इट रियली मैटर्स someone has to answer. The buck stops here. Weekdays, 8 p.m. only on NDTV. When it really matters.
5: Hindustan mile, Hindustan se.
6: Desh ka tire, JK tire.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे।
1: बोझ पेंट रंग

0: कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगाया हुआ है.
1: गोइंग बियॉन्ड व्हाट्स सेड, गेटिंग टू द रियलिटी बिहाइंड द रेटोरिक.
0: एनीवन मैसेज ऑफ यूनिट
2: हम सामने जाके जे भाव हत्या कर लेता दे फांसी दवा तो छी.
0: ऑल्सो द पुलिस एक्शन,
1: टेकिंग क्वेश्चंस वेयर दे मैटर मोस्ट.
3: द क्वेश्चन इज लैंग्वेज की हम बात करें.
1: अर्जेंट, एग्जैक्ट, empathetic.
0: There is no fire escape. There is no alternative safety route.
1: Because when it really matters, someone has to answer. The buck stops here. Weekdays, 8 p.m. only on NDTV. When it really matters.
4: Rang rang rang rang rang rangine rang rangine re. Dekho kaise bhi ho din, rang bana rahe.
5: Bojo paints, rang bana rahe.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात.
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है.
8: अरे मेरे राजा,
9: सबका राजा प्योर मसाला.
10: The only female bassist to be ranked among Music Radar's top 10 bassists of the 21st century. From India to the world stage, Mohini Day has made the bass her voice. Meet her at the NDTV World Summit. A World Between Orders, 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे.
1: अ वर्डिक्ट कैन चेंज अ बिजनेस. अ लॉ कैन रीशेप एन इंडस्ट्री. अ रेगुलेशन कैन क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी और अ रिस्क. बिकॉज व्हाट हैपेंस इन कोर्ट्स कुड हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन योर बिजनेस. जॉइन मी एज आई डीकोड व्हाट लीगल डिसीजंस मीन फॉर मार्केट्स बिजनेसेस एंड इन्वेस्टमेंट. Closing argument only on NTV Profit.
2: I know the game and the game behind it. The build-up, the action, and the people behind it. Across football, cricket, and beyond. For all the insights and everything around the game. Catch me, Gaurav Gala, on NDTV.
3: When it really matters. मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज़.

0: कॉन्डक्ट लगाया हुआ है.
1: गोइंग बियॉन्ड व्हाट सेड, गेटिंग टू द रियलिटी बिहाइंड द रेटोरिक.
0: एनीवन मैसेज ऑफ यूनिट
2: हमारा सामने जाके जे बाबू हत्या कर ले तब फांसी दवा तो उची.
0: ऑल्सो द पुलिस एक्शन,
1: टेकिंग क्वेश्चंस वेयर दे मैटर मोस्ट.
3: द क्वेश्चन इज लैंग्वेज की हम बात करें.
1: अर्जेंट, एग्जैक्ट, empathetic.
0: There is no fire escape. There is no alternative safety route.
1: Because when it really matters, someone has to answer. The buck stops here. Weekdays, 8 p.m. only on NDTV. When it really matters.
4: Rang rang rang rang rang rangine rang rangine re. Dekho kaise bhi ho din, rang bana rahe.
5: Bojo paints, rang bana rahe.
6: Hindustan mile. हिंदुस्तान से
7: देश का टायर जेके टायर.
8: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात.
9: वाओ मामा क्या स्वाद है.
10: अरे मेरे राजा
11: का राजा प्योर मसाला.
12: यार लोन भूल गया. मैरी
13: इट्स
12: जस्ट अ गुड बैंक ना.
13: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक.
12: स्मॉल फाइनेंस बैंक
13: स्मॉल. Working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
14: There's nothing small about
12: them. Ujjivan, nothing small about us.
15: The only female bassist to be ranked among Music Radar's top 10 bassists of the 21st century. From India to the world stage, Mohini Day has made the bass her voice. Meet her at the NDTV World Summit, a world between orders, 22nd and 23rd October, New Delhi.
9: Maddie, I need to open a savings account.
13: Arey, Ujjivan Small Finance Bank ma khollo.
9: Small bank?
13: Small. Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, privilege, RD, everything. There's nothing small about them.
9: Okay.
12: Ujjivan, nothing small about us.

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा, रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे
1: बोझ पेंट रंग बना

0: कंडक्ट लगाया हुआ है.
1: गोइंग बियॉन्ड व्हाट सेड, गेटिंग टू द रियलिटी बिहाइंड द रेटोरिक.
0: एनीवन मैसेज ऑफ यूनिट
2: আমার স্বামী রাখে যেভাবে হত্যা করলে তাদের ফাঁসি দেওয়া উচিত.
0: Also the police action,
1: taking questions where they matter most.
0: The question is language ki baat kare.
1: Urgent, exact, empathetic.
0: There is no fire escape, there is no alternative safety route,
1: because when it really matters, someone has to answer. The buck stops here. Weekdays 8 p.m. only on NDTV. When it really matters.
3: Guys, mera teesra store. Ab expansion ke liye na ek bank chahiye. Any suggestions? Ujjivan small finance bank. Small?
4: Small? Ab puri picture dekh lo. Loan options, big. Savings or FDP interest, big. Branch network, big. अगर small होता तो मैं साड़ में होता. Ujjivan, nothing small about us.
5: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो दिन, रंग बना रहे.
6: बोझे पेंट्स, रंग बना रहे.
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात.
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है.
9: अरे मेरे राजा.
3: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट.
4: अरे उज्जीवन, स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
3: स्मॉल बैंक?
4: स्मॉल privilege savings account, garima savings account, maxima business, edge current account, business maxima business privilege, rdf, there's nothing small about them.
3: Okay.
4: Ujjivan, nothing small about us.

0: arrived shortly after and the duo stabbed Rajput to death. Apart from that, they then fled to Himachal Pradesh the next day. Rastogi used Rajput's mobile phone to send text messages to his family members, creating an illusion that he was alive and travelling for business.
1: हम तो बहुत संतुष्ट हैं भैया इस फैसले को लेकर. हम तो चाहते हैं जो आगे जो क्राइम बढ़ रहा है आगे भी इस क्राइम की जो भी मृत्युदंड की सजा है उन लोगों को भी वही मिलनी चाहिए.
2: अच्छा, इस फैसले का करीब एक साल तक आपने इंतजार किया, ये वक्त कितना मुश्किल था आपके लिए? एक साल तक आपने वेट किया, कितना मुश्किल वक्त था आपके लिए?
1: हमारे लिए तो चल ही रहा है और आगे भी हमारे लिए मुश्किल वक्त चलेगा ही, क्योंकि हमारा तो बेटा नहीं है तो हमारा तो हर वक्त ही मुश्किल, हर चीज़ पर, छोटी छोटी चीज़ पर, हर छोटे त्यौहार पर हर समय याद आएगा. वो वैसे भी हर समय याद आता है, घर में हर छोटी छोटी चीज़ को देखता था, करता था वो.
2: अच्छा, मुस्कान की दो बेटियां हैं, क्या दोनों बेटियों को आप स्वीकार करेंगे?
1: नहीं, हमारे तो बड़ी बेटी है बस, खाली उसको हम लेंगे, उसके नाना के विवाद के बिना लेंगे हम.
2: अच्छा, और छोटी बेटी?
1: छोटी वाली को नहीं लेंगे क्योंकि वो हमारे लड़के की नहीं है, वो साहिल के परिवार को दी जाए या उसके नाना नानी को दी जाए.
2: अच्छा, ये लोग मतलब अगर ये लोग हाईकोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि जो बात कर रहे हैं जाने की, तो उस पर आप लोग क्या करेंगे?
1: हम भी जाएंगे, हम भी न्यायालय के दरवाजा खटखटाएंगे, हमें पूरा इंसाफ चाहिए. अच्छा, अगर वो जाते तो हमें भी जाना है.
2: आज कोर्टरूम में आप थी जब ये फैसला आया, तो आपने आपको उम्मीद थी कि फांसी होगी या उम्र कैद होगी?
1: नहीं, हमें तो शुरू से ही वो है कि हमारे को तो इनको फांसी ही होनी चाहिए.
2: अच्छा,
3: बच्चों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं है, अभी आदेश बाकी पूरा वर्णन चाहेंगे. दोनों को दोषी माना है, अपराध हत्या का अपराधी, जघन्य हत्या का अपराधी माना है. 302 के लिए 50,000 जुर्माना है, 238 के लिए 20,000 रुपए का जुर्माना है.
4: क्या कहेंगे, नजीर बन गया?
3: बिल्कुल नजीर बन गया, ये नजीर बनना चाहिए ही था. अदालत ने हमारी भावनाओं को, जनता की भावनाओं को और सारे अब तक के निर्णयों के भावनाओं को समझते हुए ये बहुत अच्छा निर्णय दिया गया.
0: Well, CJP leaders Ashutosh Ranka and Saurav Das have been sent to Tihar jail for 5 days after being arrested for protesting at Jantar Mantar. They were produced before magistrate at the SEM court located at Mandir Marg police station. Both the leaders were arrested on the charges of trespassing and violation of previous arrest bond. Remember, 14 Kokro Janta Party members were detained yesterday for trespassing and scaling walls of Jantar Mantar. CJP founder Bijay Dipke has spoken out on the arrest and called this a cowardly attack and an attempt to crush dissent. As per Delhi police, Saurav Das and Ashutosh Ranka are repeat offenders and they've breached the bail bond as well.
5: इस देश में तिरंगा लहराना क्या अपराध है? आशुतोष और सौरभ को 5 दिन के लिए जेल में भेजा गया है. क्यों? क्योंकि उन्होंने जंतर मंतर पर जाकर तिरंगा लहराया. ऐसा आखिरी बार तब हुआ था जब हम पर अंग्रेजों का राज था. पता होगा, आज आशुतोष, सौरभ दास और मैं और हमारे साथ सीजीपी के वॉलंटियर्स, हम जंतर मंतर की ओर गए थे और हमने बस भारत का झंडा लहराया और भारत माता की जय बोला. तो इसके लिए इस मोदी शाह के तानाशाही सरकार ने सौरभ और आशुतोष को 5 दिन के लिए जेल में भेज दिया है. ये तानाशाही सरकार का अंत होके रहेगा. आज आशुतोष का बर्थडे था, उसके बर्थडे के दिन उन्होंने भारत माता की जय और तिरंगा का झंडा लहराने के लिए उनको जेल में भेज दिया है. मेरा ये पूरे देश की जनता से कहना है कि इस सरकार ने अपने सिस्टम का यूज करते हुए, अपने अधिकारों को, गलत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट्स का तोड़ने की कोशिश शुरू की है. मेरा आपसे सबसे कहना है कि हम सबको एक साथ आकर इस तानाशाही सरकार का अंत करना होगा.
6: दिल्ली पुलिस की तरफ से ये दलील दी गई कि इन्होंने जो इनका बॉन्ड था उनका वायलेशन किया है. इनका उनका प्रेजम्पशन है कि ये फिर से ऐसा कर सकते हैं और जो इन्होंने किया है वो कानून का उल्लंघन है, 163 का उल्लंघन है. उनके हिसाब से पहली बार एक किसी, उनका कहना है कि पब्लिक बॉडी, पब्लिक प्रॉपर्टी को ट्रेसपास किया गया है विदाउट प्राइवेट कंप्लेन एंड फाइलिंग दी कंप्लेंट. दिल्ली पुलिस ने खुद कॉग्निजेंस ले लिया है और उसके अगेंस्ट एक एक्शन लेके, और जिस केस के रेफरेंस में या जो उसके लिए सेपरेट कंप्लेंट फाइल हुई है, जो बताया गया है कि कनॉट प्लेस में उसमें सेपरेट कंप्लेंट फाइल हुई है, उसको यहाँ पे यूज़ करते हुए, इसका मिसयूज़ करते हुए अपनी पावर अथॉरिटी का 5 दिन की जेसी में भेजा है.
0: Bulldozer action has been taken against the chemist shop owner. We are talking about Ashwini Kumar, who killed anti-drug activist Parvinder Singh Jota. Police and local administration bulldozed his shop and locals set it on fire over killing of an anti-drugs activist. Accused chemist Ashwani Kumar has also been arrested. Anti-drug activist Parvinder Singh Jota was shot dead by medical store owner after he confronted him for allegedly selling drugs in Punjab's Mansa. Meanwhile, a political row has erupted over murder of anti-drug activist. Punjab Congress has released a video and claimed that when anti-drug activist was murdered, Punjab CM Bhagwant Mann was attending a convocation ceremony. Opposition leaders, including the BJP, have slammed Mann government over the murder and condemned the law and order conditions in the state.
4: It has been seen all the opposition political parties, they are raising multiple questions over law and order situation because of this murder which has already sparked a political row. Right now we are reporting from Mansa. I'll request my Vijay to show all these pictures. It has been seen that social activists, they have been demanding a demolition of the house of the accused, and the police are following all the process here. We can see all these pictures. JCB machine has already been brought in front of the house of the accused. This house belongs to accused Ashwani Kumar, who has already been arrested by the police from Rajasthan. And after that, it has been seen a lot of pressure had been mounted over the local administration as well as the local police that no action has been taken against Ashwani Kumar. And now it has been seen that the police are trying to control the situation here. They are trying to follow this guidelines for demolishing this house. We are showing all these pictures from Mansa at this point of time. It has been seen that all the opposition political parties, they say the way this murder has been taken place in broad daylight, it exposes the law and order situation in the state of Punjab, and they had also blamed and made the state government responsible.
7: Parminder ne ek da ke nasha taskaran de khilaf ladai ladi. ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਤਾਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਫਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਹੇਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏਗੀ।
8: ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਮਾਨਸਾ ਮੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਚੋਟਾ ਜੋ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦਾ ਉਸਕੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ, ਸੁਬਹ ਉੱਠਤੇ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਆਦਮੀ ਗੋਲੀਆਂ ਸੇ ਮਾਰ ਦੀਏ ਗਏ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਸੇ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਨਸ਼ਾ।
0: Anyway, we're slipping into a very short, quick break, but come right back, Lots More Lined Up.
9: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
10: Hello and welcome to Watch and Prime 5 with me, Rachel Sager. What's happening?
9: The show that sets the prime time agenda.
10: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
9: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5 weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
11: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: नहीं लेंगे क्योंकि वो हमारे लड़के की नहीं है, वो साहिल के परिवार को दी जाए या उसके नाना नानी को दी जाए।
1: अच्छा, ये लोग मतलब अगर ये लोग हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि जो बात कर रहे हैं जाने की, तो उस पर आप लोग क्या करेंगे?
0: हम भी जाएंगे, हम भी न्याय लेकर दरवाजा खटखटाएंगे, हमें पूरा इंसाफ चाहिए। अगर वो जाते तो हमें भी जाना है।
1: आज कोर्ट रूम में आप थी जब ये फैसला आया, तो आपको उम्मीद थी कि फांसी होगी या उम्र कैद होगी?
0: नहीं, हमें तो शुरू से ही वो है कि हमारे को तो इनको फांसी ही होनी चाहिए।
1: अच्छा,
2: बच्चों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं है,
3: ठीक है।
2: अभी आदेश बाकी पूरा वर्णन चाहेंगे। दोनों को दोषी माना है, अपराध हत्या का अपराधी माना है, हत्या का अपराधी माना है। 302 के लिए 50,000 जुर्माना है, 238 के लिए 20,000 रुपए का जुर्माना है।
3: क्या कहेंगे, नजीर बन गया?
2: बिल्कुल नजीर बन गया, ये नजीर बनना चाहिए ही था। अदालत ने हमारी भावनाओं को, जनता की भावनाओं को और सारे अब तक के निर्णयों के भावनाओं को समझते हुए ये बहुत अच्छा निर्णय दिया गया है।
4: Well, CJP leaders Ashutosh Ranka and Saurav Das have been sent to Tihar jail for 5 days after being arrested for protesting at Jantar Mantar. They were produced before magistrate at the SEM court located at Mandir Marg police station. Both the leaders were arrested on the charges of trespassing and violation of previous arrest bond. Remember, 14 Kokro Janta Party members were detained yesterday for trespassing and scaling walls of Jantar Mantar. CJP founder Bijay Dipke has spoken out on the arrest and called this a cowardly attack and an attempt to crush dissent. As per Delhi police, Saurav Das and Ashutosh Ranka are repeat offenders and they've breached the bail bond as well.
5: इस देश में तिरंगा लहराना क्या अपराध है? आशुतोष और सौरभ को 5 दिन के लिए जेल में भेजा गया है, क्यों? क्योंकि उन्होंने जंतर मंतर पर जाकर तिरंगा लहराया। ऐसा आखिरी बार तब हुआ था जब हम पर अंग्रेजों का राज था।
6: पता होगा, आज आशुतोष, सौरभ दास और मैं और हमारे साथ सीजीपी के वॉलंटियर्स हम जंतर मंतर की ओर गए थे और हमने बस भारत का झंडा लहराया और भारत माता की जय बोला। तो इसके लिए इस मोदी शाह के तानाशाही सरकार ने सौरभ और आशुतोष को 5 दिन के लिए जेल में भेज दिया है। ये तानाशाही सरकार का अंत होके रहेगा। आज आशुतोष का बर्थडे था, उसके बर्थडे के दिन उन्होंने भारत माता की जय और तिरंगा का झंडा लहराने के लिए उनको जेल में भेज दिया है। मेरा ये पूरे देश की जनता से कहना है कि इस सरकार ने अपने सिस्टम का यूज करते हुए, अपने अधिकारों को, गलत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट्स का तोड़ने की कोशिश शुरू की है। मेरा आपसे सबसे कहना है कि हम सबको एक साथ आकर इस तानाशाही सरकार का अंत करना होगा।
7: दिल्ली पुलिस की तरफ से ये दलील दी गई कि इन्होंने जो इनका बॉन्ड था उनका वायलेशन किया है, इनका उनका प्रेजम्पशन है कि ये फिर से ऐसा कर सकते हैं और जो इन्होंने किया है वो कानून का उल्लंघन है, 163 का उल्लंघन है। उनके हिसाब से पहली बार एक उनका कहना है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को ट्रेसपास किया गया है विदाउट प्राइवेट कंप्लेन एंड फाइलिंग दी कंप्लेंट। दिल्ली पुलिस ने खुद कॉग्निजेंस ले लिया है और उसके अगेंस्ट में एक्शन लेके और जिस केस के रेफरेंस में या जो उसके लिए सेपरेट कंप्लेंट फाइल हुई है, जो बताया गया है कि कनॉट प्लेस में उसमें सेपरेट कंप्लेंट फाइल हुई है, उसको यहाँ पे यूज़ करते हुए, इसका मिसयूज़ करते हुए अपनी पावर अथॉरिटी का 5 दिन की जेसी में भेजा है।
4: Bulldozer action has been taken against the chemist shop owner. We're talking about Ashwini Kumar, who killed anti-drug activist Parvinder Singh Jota. Police and local administration bulldozed his shop and locals set it on fire over killing of an anti-drugs activist. Accused chemist Ashwini Kumar has also been arrested. Anti-drug activist Parvinder Singh Jota was shot dead by medical store owner after he confronted him for allegedly selling drugs in Punjab's Mansa. Meanwhile, a political row has erupted over murder of anti-drug activist. Punjab Congress has released a video and claimed that when anti-drug activist was murdered, Punjab CM Bhagwant Mann was attending a convocation ceremony. Opposition leaders, including the BJP, have slammed Mann government over the murder and condemned the law and order conditions in the state.
8: it has been seen all the opposition political parties, they are raising multiple questions over law and order situation because of this murder which has already sparked a political row. Right now we are reporting from Mansa. I'll request my Vijay to show all these pictures. It has been seen that social activists, they have been demanding a demolition of the house of the accused, and the police are following all the process here. We can see all these pictures. JCB machine has already been brought in front of the house of the accused. This house belongs to accused Ashwini Kumar, who has already been arrested by the police from Rajasthan. And after that, it has been seen a lot of pressure had been mounted over the local administration as well as the local police that no action has been taken against Ashwini Kumar. And now it has been seen that the police are trying to control the situation here. They are trying to follow this guidelines for demolishing this house. We are showing all these pictures from Mansa at this point of time. It has been seen that all the opposition political parties, they say the way this murder has been taken place in broad daylight, it exposes the law and order situation in the state of Punjab, and they had also blamed and made the state government
9: responsible. ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਕਾਰਿਆ ਸੀ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਤਾਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਫਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਹੇਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨ ਬਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏਗੀ।
10: ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਮਾਨਸਾ ਮੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਜੋ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦਾ ਉਸਕੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਸੁਬਹਾ ਉੱਠਤੇ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਆਦਮੀ ਗੋਲੀਆਂ ਸੇ ਮਾਰ ਦੀਏ ਗਏ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਸੇ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਨਸ਼ਾ।
4: Anyway, we're slipping into a very short, quick break, but come right back, Lost for Minded.
11: Five hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
12: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
13: High rate, check the audio.
11: Let's do it.
14: Breaking story, we're jumping straight into it.
11: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
15: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
16: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
11: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
12: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
13: High rate, check the audio.
11: Let's do it.
14: Breaking story, we're jumping straight into it.
11: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can...

0: a death using ordinary household or industrial containers to hide human remains and delay discovery. The bigger question is if the repeated use of drums and containers point to a new criminal trend, and has the blue drum become a chilling symbol? Behind every headline is a victim and a family waiting for answers. Vishnu Shom for NDTV.
1: Well, Muskan Rastogi and her lover Sahil Shukla have been given the death sentence by a local court in Meerut for the murder of a merchant navy officer Saurabh Rajput last year. Muskan and Sahil were convicted 2 weeks ago with the sentence pronounced on Wednesday. A concrete-filled blue plastic drum became the motive and the most crucial evidence of the murder case. After 126 hearings and 22 witness statements, District Judge Arvind Kumar Mishra ruled that Rastogi and Shukla conspired to kill Saurabh Rajput and concealed his dismembered body inside a blue industrial drum using concrete and sand. The judge had commented that such crimes create fear in society at large. In the morning, Muskan Rastogi's parents told the court that Saurabh Rajput was a very good person and if the guilty are sentenced to death, we will not protest. Muskan Rastogi's family never met her in prison. On March 3, 2025, Muskan Rastogi sedated her husband at the Indira Nagar home by lacing his food, as per the police that is. Her lover Sahil Shukla arrived shortly after and the duo stabbed Rajput to death. Apart from that, they then fled to Himachal Pradesh the next day. Rastogi used Rajput's mobile phone to send text messages to his family members, creating an illusion that he was alive and travelling for business.
2: हम तो बहुत संतुष्ट हैं भैया इस फैसले को लेकर हम तो चाहते हैं जो आगे जो क्राइम बढ़ रहा है आगे भी इस क्राइम की जो भी मृत्युदंड की सजा है उन लोगों को भी वही मिलनी चाहिए
3: अच्छा इस फैसले का करीब एक साल तक आपने इंतजार किया ये वक्त कितना मुश्किल था आपके लिए एक साल तक आपने वेट किया कितना मुश्किल वक्त था आपके लिए
2: हमारे लिए तो चल ही रहा है और आगे भी हमारे लिए मुश्किल वक्त चलेगा ही क्योंकि हमारा तो बेटा नहीं है तो हमारा तो हर वक्त ही मुश्किल हर चीज़ पर छोटी छोटी चीज़ पर हर छोटे त्यौहार पर हर समय याद आएगा वो वैसे भी हर समय याद आता है घर में हर छोटी छोटी चीज़ को देखता था करता था वो
3: अच्छा मुस्कान की दो बेटियां हैं क्या दोनों बेटियों को आप स्वीकार करेंगे
2: नहीं हमारे तो बड़ी बेटी है बस खाली उसको हम लेंगे उसके नाना के विवाद के बिना लेंगे हम
3: अच्छा और छोटी बेटी
2: छोटी वाली को नहीं लेंगे क्योंकि वो हमारे लड़के की नहीं है वो साहिल के परिवार को दी जाए या उसके नाना नानी को दी जाए
3: अच्छा ये लोग मतलब अगर ये लोग हाई कोर्ट जाते हैं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि जो बात कर रहे हैं जाने की तो उस पर आप लोग क्या करेंगे
2: हम भी जाएंगे हम भी न्यायालय के दरवाजा खटखटाएंगे हमें पूरा इंसाफ चाहिए अगर वो जाते हैं तो हमें भी जाना है
3: आज कोर्ट रूम में आप थी जब ये फैसला आया तो आपने आपको उम्मीद थी कि फांसी होगी या उम्र कैद होगी
2: नहीं हमें तो शुरू से ही वो है कि हमारे को तो इनको फांसी ही होनी चाहिए
3: अच्छा
4: बच्चों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं है
5: ठीक है
4: अभी आदेश बाकी पूरा वर्णन चाहेंगे
6: दोनों को दोषी माना है अपराध हत्या का अपराधी जघन्य हत्या का अपराधी माना है 302 के लिए 50,000 जुर्माना है 238 के लिए 20,000 रुपए का जुर्माना है
5: क्या कहेंगे नजीर बन गया
6: बिल्कुल नजीर बन गया ये नजीर बनना चाहिए ही था अदालत ने हमारी भावनाओं को जनता की भावनाओं को और सारे अब तक के निर्णयों के भावनाओं को समझते हुए ये बहुत अच्छा निर्णय दिया गया
1: Well, CJP leaders Ashutosh Ranka and Saurav Das have been sent to Tihar jail for 5 days after being arrested for protesting at Jantar Mantar. They were produced before magistrate at the SEM court located at Mandir Marg police station. Both the leaders were arrested on the charges of trespassing and violation of previous arrest bond. Remember, 14 Kokro Janta Party members were detained yesterday for trespassing and scaling walls of Jantar Mantar. CJP founder Vijay Dipke has spoken out on the arrest and called this a cowardly attack and an attempt to crush dissent. As per Delhi police, Saurav Das and Ashutosh Ranka are repeat offenders and they've breached the bail bond as well.
7: इस देश में तिरंगा लहराना क्या अपराध है आशुतोष और सौरभ को 5 दिन के लिए जेल में भेजा गया है क्यों क्योंकि उन्होंने जंतर मंतर पर जाकर तिरंगा लहराया ऐसा आखिरी बार तब हुआ था जब हम पर अंग्रेजों का राज था
8: पता होगा आज आशुतोष सौरभ दास और मैं और हमारे साथ सीजीपी के वॉलंटियर्स हम जंतर मंतर की ओर गए थे और हमने बस भारत का झंडा लहराया और भारत माता की जय बोला तो इसके लिए इस मोदी शाह के तानाशाही सरकार ने सौरभ और आशुतोष को 5 दिन के लिए जेल में भेज दिया है ये तानाशाही सरकार

0: कान होके रहेगा। आज आशुतोष का बर्थडे था, उसके बर्थडे के दिन उन्होंने भारत माता की जय और तिरंगा का झंडा लहराने के लिए उनको जेल में भेज दिया है। मेरा ये पूरे देश की जनता से कहना है कि इस सरकार ने अपने सिस्टम का यूज करते हुए, अपने अधिकारों को गलत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट्स का तोड़ने की कोशिश शुरू की है। मेरा आपसे सबसे कहना है कि हम सबको एक साथ आकर इस तानाशाही सरकार का अंत करना होगा।
1: दिल्ली पुलिस की तरफ से ये दलील दी गई कि इन्होंने जो इनका बॉन्ड था उनका वायलेशन किया है, उनका प्रेजम्पशन है कि ये फिर से ऐसा कर सकते हैं और जो इन्होंने किया है वो कानून का उल्लंघन है, 163 का उल्लंघन है। उनके हिसाब से पहली बार एक उनका कहना है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को ट्रेसपास किया गया है विदाउट प्राइवेट कंप्लेनेंट फाइलिंग दी कंप्लेंट। दिल्ली पुलिस ने खुद कॉग्निजेंस ले लिया है और उसके अगेंस्ट में एक्शन लेके और जिस केस के रेफरेंस में जो उसके लिए सेपरेट कंप्लेंट फाइल हुई है, जो बताया गया है कि कनॉट प्लेस में उसमें सेपरेट कंप्लेंट फाइल हुई है, उसको यहाँ पे यूज़ करते हुए, इसका मिसयूज़ करते हुए अपनी पावर अथॉरिटी का 5 दिन की जेसी में भेजा है।
2: Bulldozer action has been taken against the chemist shop owner. We are talking about Ashwini Kumar, who killed anti-drug activist Parvinder Singh Jota. Police and local administration bulldozed his shop and locals set it on fire over killing of an anti-drugs activist. Accused chemist Ashwini Kumar has also been arrested. Anti-drug activist Parvinder Singh Jota was shot dead by medical store owner after he confronted him for allegedly selling drugs in Punjab's Mansa. Meanwhile, a political row has erupted over murder of anti-drug activist. Punjab Congress has released a video and claimed that when anti-drug activist was murdered, Punjab CM Bhagwant Mann was attending a convocation ceremony. Opposition leaders, including the BJP, have slammed Mann government over the murder and condemned the law and order conditions in the state.
3: It has been seen all the opposition political parties, they are raising multiple questions over law and order situation because of this murder which has already sparked a political row. Right now we are reporting from Mansa. I'll request my Vijay to show all these pictures. It has been seen that social activists, they have been demanding a demolition of the house of the accused and the police are following all the process here. We can see all these pictures. JCB machine has already been brought in front of the house of the accused. This house belongs to accused Ashwini Kumar, who has already been arrested by the police from Rajasthan, and after that it has been seen a lot of pressure had been mounted over the local administration as well as the local police that no action has been taken against Ashwini Kumar, and now it has been seen that the police are trying to control the situation here. They are trying to follow this guidelines for demolishing demolishing this house. We are showing all these pictures from Mansa at this point of time. It has been seen that all the opposition political parties, they say the way this murder has been taken place in broad daylight, it exposes the law and order situation in the state of Punjab, and they had also blamed and made the state government responsible.
4: Parminder ne ek da ke nasha taskaran de khilaf ladai ladi. ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਕਾਰਿਆ ਸੀ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਤਾਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਫਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਹੇਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨ ਬਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏਗੀ।
5: ਕੱਲ ਹੀ ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਮਾਨਸਾ ਮੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਚੋਟਾ ਜੋ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦਾ ਉਸਕੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਸੁਬਹਾ ਉੱਠਤੇ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਆਦਮੀ ਗੋਲੀਆਂ ਸੇ ਮਾਰ ਦੀਏ ਗਏ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ

0: Shan Rastogi and her lover Sahil Shukla have been given the death sentence by a local court in Meerut for the murder of a Merchant Navy officer Saurabh Rajput last year. Muskan and Sahil were convicted 2 weeks ago with the sentence pronounced on Wednesday. A concrete-filled blue plastic drum became the motive and the most crucial evidence of the murder case. After 126 hearings and 22 witness statements, District Judge Arvind Kumar Mishra ruled that Rastogi and Shukla conspired to kill Saurabh Rajput and concealed his dismembered body inside a blue industrial drum using concrete and sand. The judge had commented that such crimes create fear in society at large. In the morning, Muskan Rastogi's parents told the court that Saurabh Rajput was a very good person and if the guilty are sentenced to death, we will not protest. Muskan Rastogi's family never met her in prison. On March 3, 2025, Muskan Rastogi sedated her husband at the Indira Nagar home by lacing his food, as per the police that is. Her lover Sahil Shukla arrived shortly after and the duo stabbed Rajput to death. Apart from that, they then fled to Himachal Pradesh the next day. Rastogi used Rajput's mobile phone to send text messages to his family members, creating an illusion that he was alive and travelling for business.
1: हम तो बहुत संतुष्ट हैं भैया इस फैसले को लेकर हम तो चाहते हैं जो आगे जो क्राइम बढ़ रहा है आगे भी इस क्राइम की जो भी मृत्युदंड की सजा है उन लोगों को भी वही मिलनी चाहिए
2: अच्छा इस फैसले का करीब एक साल तक आपने इंतजार किया ये वक्त कितना मुश्किल था आपके लिए एक साल तक आपने वेट किया कितना मुश्किल वक्त था आपके लिए
1: हमारे लिए तो चल ही रहा है और आगे भी हमारे लिए मुश्किल वक्त चलेगा ही क्योंकि हमारा तो बेटा नहीं है तो हमारा तो हर वक्त ही मुश्किल हर चीज़ पर छोटी छोटी चीज़ पर हर छोटे त्यौहार पर हर समय याद आएगा वो वैसे भी हर समय याद आता है घर में हर छोटी छोटी चीज़ को ये देखता था करता था वो
2: अच्छा मुस्कान की दो बेटियां हैं क्या दोनों बेटियों को आप स्वीकार करेंगे
1: नहीं हमारे तो बड़ी बेटी है बस खाली उसको हम लेंगे उसके नाना के विवाद के बिना लेंगे हम
2: अच्छा और छोटी बेटी
1: छोटी वाली को नहीं लेंगे क्योंकि वो हमारे लड़के की नहीं है वो साहिल के परिवार को दी जाए या उसके नाना नानी को दी जाए
2: अच्छा ये लोग मतलब अगर ये लोग हाईकोर्ट जाते हैं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि जो बात कर रहे हैं जाने की तो उस पर आप लोग क्या करेंगे
1: हम भी जाएंगे हम भी न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे हमें पूरा इंसाफ चाहिए अगर वो जाते हैं तो हमें भी जाना है
2: आज कोर्ट रूम में आप थी जब ये फैसला आया तो आपने आपको उम्मीद थी कि फांसी होगी या उम्र कैद होगी
1: नहीं हमें तो शुरू से ही वो है कि हमारे को तो इसको इनको फांसी ही होनी चाहिए
2: अच्छा
3: बच्चों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं है
4: ठीक है
3: अभी आदेश बाकी पूरा वर्णन चाहेंगे
4: दोनों को दोषी माना है अपराध
3: हत्या का अपराधी जघन्य हत्या का अपराधी माना है 302 के लिए 50,000 जुर्माना है 238 के लिए 20,000 रुपए का जुर्माना है
4: क्या कहेंगे नजीर बन गया
3: बिल्कुल नजीर बन गया ये नजीर बनना चाहिए ही था अदालत ने हमारी भावनाओं को जनता की भावनाओं को और सारे अब तक के निर्णयों के भावनाओं को समझते हुए ये बहुत अच्छा निर्णय दिया गया
0: Well, CJP leaders Ashutosh Ranka and Saurabh Das have been sent to Tihar jail for 5 days after being arrested for protesting at Jantar Mantar. They were produced before magistrate at the SEM court located at Mandir Marg police station. Both the leaders were arrested on the charges of trespassing and violation of previous arrest bond. Remember, 14 Kokro Janta Party members were detained yesterday for trespassing and scaling walls of Jantar Mantar. CJP founder Bijay Dipke has spoken out on the arrest and called this a cowardly attack and an attempt to crush dissent. As per Delhi police, Saurabh Das and Ashutosh Ranka are repeat offenders and they've breached the bail bond as well.
5: इस देश में तिरंगा लहराना क्या अपराध है आशुतोष और सौरभ को 5 दिन के लिए जेल में भेजा गया है क्यों क्योंकि उन्होंने जंतर मंतर पर जाकर तिरंगा लहराया ऐसा आखिरी बार तब हुआ था जब हम पर अंग्रेजों का राज था
6: पता होगा आज आशुतोष सौरभ दास और मैं और हमारे साथ सीजीपी के वॉलंटियर्स हम जंतर मंतर की ओर गए थे और हमने बस भारत का झंडा लहराया और भारत माता की जय बोला तो इसके लिए इस मोदी शाह के तानाशाही सरकार ने सौरभ और आशुतोष को 5 दिन के लिए जेल में भेज दिया है ये तानाशाही सरकार का अंत होके रहेगा आज आशुतोष का बर्थडे था उसके बर्थडे के दिन उन्होंने भारत माता की जय और तिरंगा का झंडा लहराने के लिए उनको जेल में भेज दिया है मेरा ये पूरे देश की जनता से कहना है कि इस सरकार ने अपने सिस्टम का यूज करते हुए, अपने अधिकारों को गलत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट्स का तोड़ने की कोशिश शुरू की है। मेरा आपसे कहना है कि हम सबको एक साथ आकर इस तानाशाही सरकार का अंत करना होगा।
7: दिल्ली पुलिस की तरफ से ये दलील दी गई कि इन्होंने जो इनका बॉन्ड था उनका वायलेशन किया है, इनका उनका प्रेजम्पशन है कि ये फिर से ऐसा कर सकते हैं और जो इन्होंने किया है वो कानून का उल्लंघन है, 163 का उल्लंघन है। उनके हिसाब से पहली बार एक उनका कहना है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को ट्रेसपास किया गया है विदाउट प्राइवेट कंप्लेन एंड फाइलिंग दी कंप्लेंट। दिल्ली पुलिस ने खुद कॉग्निजेंस ले लिया है और उसके अगेंस्ट में एक्शन लेके और जिस केस के रेफरेंस में या जो उसके लिए सेपरेट कंप्लेंट फाइल हुई है, जो बताया गया है कि कनॉट प्लेस में उसमें सेपरेट कंप्लेंट फाइल हुई है, उसको यहाँ पे यूज़ करते हुए, इसका मिसयूज़ करते हुए अपनी पावर अथॉरिटी का 5 दिन की जेसी में भेजा है।
0: Bulldozer action has been taken against the chemist shop owner. We're talking about Ashwini Kumar, who killed anti-drug activist Parvinder Singh Jota. Police and local administration bulldozed his shop and locals set it on fire over killing of an anti-drugs activist. Accused chemist Ashwini Kumar has also been arrested. Anti-drug activist Parvinder Singh Jota was shot dead by medical store owner after he confronted him for allegedly selling drugs in Punjab's Mansa. Meanwhile, a political row has erupted over murder of anti-drug activist. Punjab Congress has released a video and claimed that when anti-drug activist was murdered, Punjab CM Bhagwant Mann was attending a convocation ceremony. Opposition leaders, including the BJP, have slammed Mann government over the murder and condemned the law and order conditions in the state.
8: It has been seen all the opposition political parties, they are raising multiple questions over law and order situation because of this murder which has already sparked a political row. Right now we are reporting from Mansa. I'll request my Vijay to show all these pictures. It has been seen that social activists, they have been demanding a demolition of the house of the accused and the police are following all the process here. We can see all these pictures. JCB machine has already been brought in front of the house of the accused. This house belongs to accused Ashwini Kumar, who has already been arrested by the police from Rajasthan, and after that it has been seen a lot of pressure had been mounted over the local administration as well as the local police that no action has been taken against Ashwini Kumar, and now it has been seen that the police are trying to control the situation here. They are trying to follow this guidelines for demolishing this house. We are showing all these pictures from Mansa at this point of time. It has been seen that all the opposition political parties, they say the way this murder has been taken place in broad daylight, it exposes the law and order situation in the state of Punjab, and they had also blamed and made the state government responsible.
9: Parminder ne ek da ke nasha taskaran de khilaf ladai ladi. ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਕਾਰਿਆ ਸੀ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਤਾਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਫਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਹੇਗੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਨ ਬਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏਗੀ।
10: ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਮਾਨਸਾ ਮੇਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਚੋਟਾ ਜੋ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਥਾ, ਉਸਕੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ, ਸੁਬਹ ਉੱਠਤੇ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਆਦਮੀ ਗੋਲੀਆਂ ਸੇ ਮਾਰ ਦੀਏ ਗਏ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਸੇ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਨਸ਼ਾ।
0: Anyway, we're slipping into a very short, quick break, but come right back. Lost for 9.
11: आरोप लगाया हुआ है.
12: गोइंग बियॉन्ड व्हाट्स सेड, गेटिंग टू द रियलिटी बिहाइंड द रेटोरिक.
11: एनी वन मैसेज ऑफ यूनिट
13: हमारा स्वामी जाके जे बाबू हत्या कर ले तब फांसी दवा तो छी.
11: Also, the police action.
12: Taking questions where they matter most.
11: The question is, language ke baat kare.
12: Urgent, exact, empathetic.
11: There is no fire escape. There is no alternative safety route.
12: Because when it really matters, someone has to answer. The buck stops here. Weekdays, 8 p.m. only on NDTV. When it really matters.
14: The only female bassist to be ranked among Music Radar's top 10 bassists of the 21st century. From India to the world stage, Mohini Day has made the bass her voice. Meet her at the NDTV World Summit, a world between orders, 22nd and 23rd October, New Delhi.